0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, मैं आपकी मित्र विमलेश उमंग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूं।
3: और मैं आपका मित्र अजीत, आप सबों को उमंग कार्यक्रम की ओर से जोहार। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने बड़ा खूबसूरत विचार भेजा है। विचार शिक्षा के बारे में है, लिखते हैं,
2: शिक्षा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास कर सकती है।
3: जी, इतने सुंदर विचार के लिए आप सबको हमारा आभार। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से, प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जौहरी, पूजा और पायल।
2: राजानगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद।
3: तो श्रोताओ, हम कहना चाहते हैं कि आपके संदेश हमारे लिए हमेशा प्रोत्साहन का कारण होते हैं। पुनः धन्यवाद। निवेदन है कि इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम के साथ।
2: जी,
3: आइए अब चलते हैं आविष्कार की एक और बेहद रोचक और मजेदार कहानी में।
2: श्रोताओ, अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारी जिंदगी में कई ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में हम ये सोचते भी नहीं है कि कभी उनका भी आविष्कार हुआ होगा। नजर दौड़ाइए ना अपने चारों ओर, आप पाएंगे कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं। तो चलिए अब बढ़ाते हैं चर्चा को आगे।
3: तो आज हम बात करेंगे बॉल पेन के बारे में।
2: जी,
3: वही बॉल पेन जो अक्सर हमारे हाथों में मिलता है। आप सोच रहे होंगे भला बॉल पेन में ऐसी क्या कहानी हो सकती है, छोटी सी कलम ही तो है बस।
2: लेकिन श्रोताओ, कई बार हम महसूस ही नहीं कर पाते कि जिस चीज को हम मामूली समझते हैं उसके पीछे कभी कभी पूरी दुनिया की मेहनत छिपी होती है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी जेब में बॉल पेन न हो तो कितनी मुश्किल हो जाए।
3: आपको याद होगा कि पहले लिखने के लिए फाउंटेन पेन हुआ करते थे, जिन्हें हम कलम भी कहते थे। उन दिनों समस्या ये थी कि पुराने समय की कलमें अक्सर आसानी से नहीं चलती थी। फाउंटेन पेन में स्याही भरनी पड़ती थी, स्याही फैल सकती थी, वो रिस भी सकती थी, कपड़ों में भी लग सकती थी। एक बड़ी समस्या ये भी थी कि फाउंटेन पेन की लिखाई जल्दी सूखती भी नहीं थी। लिखते समय निब को भी संभालना पड़ता था, और तो और गिर जाने पर निब के टूट जाने का भी डर लगा रहता था। यानी समस्या पर समस्या।
2: तो श्रोताओं, वैज्ञानिकों और आविष्कारों के मन में सवाल था, क्या ऐसी कलम बनाई जा सकती है जिसमें स्याही अपने आप नीचे आए लेकिन रिसे नहीं, साथ ही साथ निब भी न टूटे। और यहीं से शुरू होती है हमारे बॉल पेन के आविष्कार की रोचक यात्रा।
3: तो श्रोताओं, हुआ ये कि 20वीं सदी के आरंभ में कई लोगों ने ऐसी कलम बनाने के प्रयोग किए।
2: जी,
3: लेकिन सफलता आसान नहीं थी। यहीं से इस कहानी में प्रवेश होता है हंगरी के पत्रकार और आविष्कारक लाज़लो बायरो का। उन्होंने ध्यान दिया कि अखबार छापने वाली मशीन की स्याही जल्दी सूख जाती है। एक विचार उनके मन में कौंधा, अगर यही जल्दी सूखने वाली स्याही कलम में इस्तेमाल की जाए तो। विचार तो अच्छा था, लेकिन
2: एक नई समस्या सामने आई। वो ये थी कि स्याही फाउंटेन पेन की पतली निब से आसानी से नहीं निकलती थी। फिर लाज़लो बायरो ने सोचा, स्याही को निब से निकालने के बजाय क्यों न एक छोटी सी गेंद के सहारे कागज पर पहुंचाएं? और उन्होंने एक बहुत ही छोटी गेंद बनाई।
3: जी, कल्पना कीजिए श्रोताओ, जब गेंद कागज पर घूमती तो वह स्याही को अपने साथ लेकर आती और कागज पर छोड़ देती।
2: जी,
3: यानी गेंद घूमती जाती और उसके आगे आगे शब्द बनते जाते।
2: जी,
3: यही तो है नवाचार।
2: कलम की अगली नोक या पॉइंट पर एक बेहद छोटी गेंद। इस छोटी गेंद यानी बॉल के कारण नाम पड़ा बॉल पॉइंट पेन। बायरो और उनके भाई जॉर्ज बायरो ने सन 1938 में अपने बॉल पॉइंट पेन का पेटेंट कराया।
3: और श्रोता मित्रों, उसके बाद जो हुआ ना वो इतिहास है। स्कूल के बच्चों से लेकर बड़े अधिकारी तक सबके हाथ में अब बॉल पेन दिखने लगी।
2: जी,
3: इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान था। ढक्कन खोलिए

0: कागज पर रखिए और लिखना शुरू कर दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: न स्याही की दवा चाहिए और न निब को बार बार स्याही में डुबोने की झंझट।
1: जी, आज बॉल पेन के अंदर एक पतली सी स्याही की एक ट्यूब होती है और सबसे आगे एक बहुत

0: करते हैं और फॉर्म भरते हैं उस समय हमारी उंगलियों के बीच चुपचाप चलती है वही तकनीक जिसे बायरो ने लगभग एक सदी पहले विकसित किया था।
1: तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और अब प्रस्तुत है आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
0: तो हमारा प्रश्न है कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वे किस देश के थे। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था और वो किस देश के थे। आप हमें अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी ताज़ा जानकारी के लिए CIT NCERT को जरूर फॉलो कीजिए। और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो सर्च इंजन में जाइए और टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। और यदि इन पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं या हमारे शैक्षिक कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का हमारा पहला कार्यक्रम। शीर्षक है समझदारी।
1: उर्दू की कक्षा 2 की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में संदेश दिया गया है कि समझदारी इसी में है कि यदि हम एक दूसरे के साथ सहयोग और भाईचारे की भावना से रहें तो इसी में सबकी भलाई है।
0: समझदारी।
2: वकार पढ़ने में बहुत होशियार था। एक दिन उसने अपने वालिद से 50 रुपए मांगे। उसके वालिद ने पूछा,
3: बेटा तुम 50 रुपयों का क्या करोगे?
4: अब्बा, मुझे इन रुपयों की जरूरत है। मुझे एक पेंसिल, एक रबर और एक पेंसिल तराश खरीदना है।
3: अच्छा ठीक है, मैं कल तुम्हें ये सब चीजें खरीद कर दे दूंगा।
4: अब्बा, मुझे इन चीजों की अभी जरूरत है, मुझे स्कूल का काम करना है।
3: लेकिन बेटा, क्या तुम ये सब चीजें खुद खरीद लोगे? क्या तुम्हें रुपयों को जोड़ना और घटाना आता है?
4: जी हाँ, मुझे रुपयों को जोड़ना और घटाना अच्छी तरह से आता है।
3: अच्छा, जरा ये तो बताओ कि इन रुपयों से तुम ये चीजें किस किस तरह खरीदोगे?
4: इन 50 रुपयों से मैं 20 रुपए की एक कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, 5 रुपए की रबर और 5 रुपए की पेंसिल तराश खरीदूंगा।
3: बेटा, अब जोड़ कर बताओ कि कुल कितने रुपए हुए?
4: 20 रुपए की कॉपी, 5 रुपए की पेंसिल, ये हुए 25 रुपए। अब इन 25 रुपयों में 5 रुपए रबर के जोड़ दिए तो हो गए 30 रुपए। इन 30 रुपयों में 5 रुपए पेंसिल तराश के जोड़े तो कुल हुए 35 रुपए।
3: शाबाश बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक हिसाब लगाया है। अच्छा तो ये बताओ कि 50 रुपए में से तुमने 35 रुपए का सामान खरीद लिया, अब तुम्हारे पास कितने रुपए बाकी बचे?
4: 50 रुपयों में से 35 रुपए घटाए तो बचे 15 रुपए।
3: तुम्हें तो जोड़ना और घटाना खूब आता है। ये लो 50 रुपए और ये सभी चीजें खरीद कर ले आओ।
0: प्रिय मित्र, अब कुछ हमारे सोचने और करने के लिए। जब हम छोटे बच्चों के हाथ में कुछ पैसे देते हैं तो क्या बाद में उस पैसे का हिसाब उनसे पूछते हैं? यदि हमारा जवाब हाँ है तो भाई ये तो बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे में समझदारी, जिम्मेदारी और ईमानदारी का जज्बा बढ़ता है। और हाँ बच्चों, जब घर के बड़े आपको पैसे देते हैं तो क्या आप उन्हें खुद जाकर पैसे का हिसाब देते हैं? यदि हाँ तो फिर भाई इसके लिए तो आपको शाबाशी देनी चाहिए। बड़े पूछें या ना पूछें, आप हिसाब जरूर दीजिए। आई ना बात समझ में?
3: मश्क।
2: होशियार,
3: समझदार,
2: पेंसिल तराश,
3: पेंसिल को छीलने वाला शार्पनर,

0: सोचिए और बताइए, वकार ने अपने वालिद से 50 रुपए क्यों मांगे?
1: वकार को क्या क्या चीजें खरीदनी थी?
0: सब चीजें खरीदने के बाद वकार के पास कितने रुपए बाकी बचे?
1: बेटे से सही हिसाब सुनकर वालिद ने क्या कहा?
2: अभी आपने सुना कार्यक्रम समझदारी।
3: आओ खेले झटपट चटपट कुछ अनूठे खेल, सब मिलकर बनाए हम अक्षरों की।

0: और अब आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम। शीर्षक है, असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।
1: प्रेरक प्रसंग श्रृंखला के अंतर्गत इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध आविष्कारक थॉमस एल्वा एडिसन के बारे में बताया गया है, किस प्रकार उन्होंने बिजली के बल्ब के आविष्कार के क्रम में कई बार असफलताओं का सामना किया और उनसे हतोत्साहित नहीं हुए, लेकिन उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया।
2: नमस्कार साथियों,
3: प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक प्रेरणादायक प्रसंग।
2: तो आइए सबसे पहले पूछते हैं एक पहेली, जरा बताइए तो वो कौन है?
3: उन्हें दुनिया में सबसे अधिक आविष्कार करने और उनका पेटेंट लेने का श्रेय प्राप्त है।
2: उन्होंने लगभग 1300 आविष्कार किए, जरा सोचिए।
3: साथियों, यदि आपके मन में थॉमस एडिसन का नाम आ रहा है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है।
2: जी हाँ, वो महान आविष्कारक और वैज्ञानिक हैं, थॉमस एल्वा एडिसन। उन्हें मुख्य रूप से बिजली के बल्ब, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर और चलचित्र के आविष्कार के लिए जाना जाता है।
3: महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान नगर में 11 फरवरी 1847 को हुआ था। वे अपनी माता नैन्सी एलियट और पिता सैमुअल एडिसन की 7वीं संतान थे।
2: बचपन से ही वो बहुत ही जिज्ञासु थे। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान वो शिक्षकों से अक्सर ऐसे प्रश्न पूछ लिया करते थे जिनका जवाब देना कठिन होता था। शिक्षक और सहपाठी उन्हें शरारती और मूर्ख समझते थे।
3: एक दिन की बात है, शिक्षक ने बालक एडिसन को बुलाया और उसके हाथ में एक चिट्ठी थमा कर कहा,
4: अपनी माँ को ये चिट्ठी दे देना।
3: भोले भाले बच्चे ने वो चिट्ठी ली और घर पहुंचकर अपनी माँ को दे दी।
5: माँ, ये चिट्ठी।
3: माँ ने जब वो चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने वो चिट्ठी अलमारी में रख दी।
2: दूसरे दिन से एडिसन फिर कभी स्कूल नहीं गए। वो घर पर ही पढ़ाई करने लगे। एक बार उन्होंने अपनी माँ से पूछा,
5: माँ, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? क्या अध्यापक ने चिट्ठी में कुछ लिखा है?
2: बेटा एडिसन, उन्होंने ये कहा कि आपका बेटा बहुत बुद्धिमान है।
5: अच्छा,
2: इसलिए वो हमारे विद्यालय के लायक नहीं है। क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो ना।
5: अच्छा,
2: उनको लगता है कि उनके विद्यालय में तुम्हारी प्रतिभा वैसी नहीं निखर पाएगी जैसी कि आशा की जाती है। हाँ, ठीक है। बहुत अच्छे। साथियों,

0: उनकी माँ स्वयं एक शिक्षिका थी और वो जानती थी कि ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है। उन्होंने एडिसन को घर पर ही पढ़ाया। वो एडिसन के सभी प्रश्नों का उत्तर यथासंभव देने की कोशिश करती और प्रारंभ में उन्हें बुनियादी साक्षरता के साथ साथ अंकगणित पढ़ाया। उन्हें विशेषकर विज्ञान में बहुत रुचि थी।
1: उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए उन्होंने बड़े होने पर काम करना शुरू किया और परिवार की सहायता भी करने लगे। अमेरिका के डेट्रॉइट शहर के रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अखबार और चॉकलेट बेचने का काम किया।
0: रेल के डिब्बे में ही उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला बना ली थी। एक बार की बात है, वो रेल के डिब्बे में ही कुछ रासायनिक प्रयोग कर रहे थे कि फास्फोरस के गिर जाने के कारण वहां आग लग गई, भगदड़ मच गई।
1: इतने में रेल अधीक्षक वहां भागा भागा आया और जब उसने सारा माजरा देखा तो उसके क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने एडिसन को एक जोरदार थप्पड़ मारा जिसके कारण वे हमेशा के लिए आंशिक रूप से बहरे हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पढ़ना व प्रयोग करना जारी रखा। उनकी मां उन्हें पढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें देती और प्रोत्साहित करती कि वे जितना अधिक हो सकता है अवश्य पढ़ें। थॉमस एडिसन के मन में पढ़ने की अदम्य इच्छा उनकी मां के कारण ही उत्पन्न हुई।
0: एक बार उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था,
1: ओह, मैंने यथासंभव लगभग सब कुछ पढ़ा है जो कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। मुझे पुस्तकों से अगाध प्रेम है।
0: साथियों, उनकी स्मृति में थॉमस एडिसन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम बनाया गया है। इस विशाल म्यूजियम की तीसरी मंजिल में उन किताबों का विशाल संग्रह है जो किताबें थॉमस एडिसन ने अपने जीवन काल में पढ़ी थी। थॉमस एडिसन ने एक बार अपनी माँ के बारे में कहा था,
1: मेरी माँ ने ही मेरा निर्माण किया। वे बहुत सच्ची थी और मुझ पर विश्वास करती थी।
0: थॉमस एडिसन ने अपनी पहली प्रयोगशाला अपने घर पर ही उस समय बनाई थी जब वो मात्र 10 वर्ष के थे। कहते हैं कि वो बेहद परिश्रमी थे और अक्सर अपनी प्रयोगशाला में प्रयोग करते करते वो लेबोरेटरी की कुर्सी या टेबल पर ही सो जाया करते थे। समय बीता, इस बीच उनकी माँ का देहांत हो गया था। बहुत वर्ष बीते और एडिसन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो सफलता की बुलंदियों को लांघते हुए विश्व प्रसिद्ध आविष्कारक बन चुके थे।
1: उनके द्वारा किए गए आविष्कारों में मुख्य रूप से कार्बन माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, चलचित्र, ग्रामोफोन, विद्युत वोट रिकॉर्डर, विद्युत वितरण प्रणाली और बिजली का बल्ब है। बिजली के बल्ब के आविष्कार की कहानी अत्यंत रोचक है।
0: इसका आविष्कार करने के लिए थॉमस एडिसन को सैकड़ों बार असफलता का सामना करना पड़ा। शुरू में कई बल्ब चले लेकिन कुछ ही सेकंड्स या मिनट में टूट गए। लेकिन एडिसन ने जैसे हार मानना सीखा ही नहीं था।
1: अथक परिश्रम और सतत प्रयोगों के बाद अंत में 1889 में उन्हें बिजली का बल्ब बनाने में सफलता हाथ लगी। पहला बिजली का सफल बल्ब लगभग 40 घंटों तक जला। 1880 में उन्होंने इसमें और अधिक सुधार किया और अब ये महीनों तक लगातार जल सकता था।
0: जब बिजली के बल्ब का आविष्कार हुआ तो सारे अमेरिका में तहलका मच गया। लोगों के लिए ये किसी अजूबे से कम नहीं था। दूर दूर से लोग इस बल्ब को देखने के लिए आते थे। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बेंजामिन हैरिसन ने इस महान आविष्कार के

0: लिए उनका विशेष रूप से अभिनंदन किया और उनसे निवेदन किया कि वो अमरीकी राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास व्हाइट हाउस को बिजली के बल्बों से जगमगा दे।
1: एक बार की बात है, उनके सम्मान में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बहुत से पत्रकार जमा थे। एक पत्रकार ने पूछा,
0: मिस्टर एडिसन, बिजली के बल्ब के आविष्कार की प्रक्रिया में आप कितनी बार असफल हुए?
1: लगभग 10,000 बार।
0: 10,000 बार?
1: लेकिन मैं उन्हें असफलता नहीं कहूंगा।
0: अच्छा?
1: मैं कहूंगा कि मैंने 10,000 उन तरीकों को खोजने में सफलता पाई जिनसे बिजली का बल्ब बनाया नहीं जा सकता था।
0: अरे वाह।
1: वे दरअसल 10,000 स्टेप्स थे जिन्हें तय करके मैं सफलता तक पहुंचा।
0: क्या बात है। तो साथियों, ये था असफलताओं के प्रति थॉमस एडिसन का दृष्टिकोण। उन्होंने अपनी असफलताओं को भी बहुत सकारात्मक ढंग से देखा। अपने बहरेपन के बारे में एक बार उन्होंने विनोदपूर्ण ढंग से कहा था,
1: मैं ठीक से सुन नहीं पाता हूँ, इसके मुझे 2 लाभ मिलते हैं। पहली बात, लोग मेरे पास आकर व्यर्थ की बात नहीं करते, और दूसरी बात, इसके कारण मैं पुस्तकों और वैज्ञानिक सोच को अधिक समय दे पाता हूँ।
0: एक दिन एडिसन ने पुरानी अलमारी को खोला और यूं ही कुछ देखने लगे कि तभी एक लिफाफा नीचे गिरा। एडिसन ने उसे उठाया। अरे, ये तो वही पत्र था जो उनके स्कूल के अध्यापक ने भेजा था। उन्होंने उसे पढ़ा। लिखा था,
1: डियर मिसेस एडिसन, आपका बच्चा बेहद मंद बुद्धि का है और वो कुछ सीख नहीं सकता। उसके स्कूल में होने से दूसरे बच्चों पर भी फर्क पड़ता है, इसलिए अच्छा होगा उसके लिए कोई दूसरा स्कूल देख ले या उसे स्वयं ही पढ़ा ले।
0: थॉमस एडिसन की आंखों से आंसू बहने लगे। ये है किसी बच्चे के सर्वांगीण विकास में एक माता की सकारात्मक भूमिका। उन्होंने हमेशा ये बोल बोल कर कि तुम जीनियस हो, अपने बेटे का मनोबल बढ़ाया और यहां तक बढ़ाया कि थॉमस एडिसन इतिहास का स्वर्णिम हस्ताक्षर बन गए। जीवन के संघर्षों के प्रति उनका एक कथन बहुत प्रसिद्ध है,
1: हम तब नहीं हारते जब हम गिर जाते या हार जाते हैं। दरअसल हम तब हारते हैं जब हम गिरकर उठने से इनकार कर देते हैं। 18 अक्टूबर 1931 को वेस्ट ऑरेंज, न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका में 84 वर्ष की आयु में इस महान आविष्कारक का निधन हो गया। विश्व उनके अमूल्य योगदान को सर्वदा याद रखेगा।
2: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम असफलताएं भी शिक्षक होती हैं।

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 12 గంటలు కావస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో వార్తలు వింటారు.
1: నమస్కార్, ఆకాశవాణి సమాచార్ కే సాథ్ మే జాగృతి శర్మ. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेवा जीवन का मुख्य उद्देश्य और स्वभाव में होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि राजनीति में भी सेवा ही मार्गदर्शक सिद्धांत होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी सर्वोच्च पद पर क्यों न पहुंच जाए. श्री मोदी ने गुजरात के वडनगर से वाराणसी तक सेवा यात्रा पर जा रहे सेवा यात्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस से संवाद के दौरान ये बात कही.
2: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे. हमारे अपने आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा. कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे.
1: सेवा यात्रियों ने प्रधानमंत्री के साथ अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि अभियान के अंतर्गत पौधारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए गए. भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जल्द सुधार की आवश्यकता पर बल दिया है. न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान G4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई. इसमें विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो वियेरा, जर्मनी के विदेश मंत्री योहान डेविड वाडेफुल और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु शामिल हुए. संयुक्त बयान में मंत्रियों ने कहा कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी दोनों श्रेणियों में विस्तार सुधार का मुख्य हिस्सा है. उन्होंने कहा कि मौजूदा चुनौतीपूर्ण भू राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा परिषद में सुधार पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है. डॉ एस जयशंकर ने भारत प्रशांत द्वीप सहयोग मंच के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में सहयोग मंच की साझेदारी और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई गई. बैठक में सहयोग मंच के शिखर सम्मेलनों के परिणामों की समीक्षा भी हुई. भारत ने सिकल सेल उपचार में सुगमता और परिवर्तन लाने के लिए वैश्विक साझेदारी वन

एससीडी की सह मेजबानी की। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान में भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि 2047 तक सिकल सेल रोग को समाप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह अभियान शुरू किया गया था। वित्त मंत्रालय ने बताया है कि ग्राहकों की सुविधा के लिए सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रविवार 27 सितंबर को खुले रहेंगे। मंत्रालय ने कहा कि यह कदम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा 28 से 30 सितंबर तक प्रस्तावित 3 दिन की राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल को देखते हुए उठाया गया है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंक शाखाओं, कार्यालयों, एटीएम से जुड़ी शाखाओं और करेंसी चेस्ट को रविवार को पूरी तरह चालू रखने की मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर कल रात एक स्लीपर बस में आग लगने से 9 यात्रियों की मौत हो गई। कई यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। पुलिस के अनुसार ये घटना आधी रात के करीब जेवर पुलिस थाना क्षेत्र के दयानाथपुर गांव के निकट हुई। बस नोएडा से आगरा जा रही थी, इसमें करीब 35 यात्री सवार थे। जेवर पुलिस ने मामले की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बस दुर्घटना में मृतकों के निकटतम परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों का इलाज और पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा बस दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। जापान एशियाई खेलों में भारत की रोशिबिना देवी नाउरेम ने वुशू में महिलाओं के 60 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में रजत पदक जीता। सतनाम सिंह और सलमान खान की जोड़ी ने नौकायन की पुरुष डबल्स स्कल्स स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पदक विजेताओं को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi highlights service as the main purpose of life, says Seva Paramo Dharma should remain the guiding principle. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar chairs meeting of Forum for India-Pacific Islands Cooperation Foreign Ministers on the sidelines of 81st United Nations General Assembly in New York. Government says India is manufacturing nearly 99.2% of country's total domestic demand for mobile phones. Red alert issued for very heavy rainfall over West Bengal, Telangana, Chhattisgarh, coastal Andhra Pradesh and Odisha today. And India storms into men's Kabaddi semi-finals after beating Chinese Taipei in final Group A fixture at Asian Games in Japan. Prime Minister Narendra Modi today said service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi. The Prime Minister said Seva Paramo Dharma, service is the highest duty, should remain the guiding principle.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा के मार्ग से नहीं विचलित होंगे, कितने ही ऊंचे शिखर पर पहुंचेंगे, लेकिन सेवा परमो धर्म इस भाव को लेकर आगे बढ़ेंगे।
0: Mr. Modi said service is the biggest driving force. He said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery. The Prime Minister said it is only owing to a spirit of service that 4 crore poor have received permanent houses.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है। वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं। हमें इन अनुभवों से भी सीखना है। अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होते हैं। वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने ही है। एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए, एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने।
0: The Prime Minister said we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India. He said everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है। आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर

0: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం స్టూడియో క్లాక్ల సమయం 3 గంటలు దాటింది. ఇప్పుడు వివిధ భారతి ముంబై కేంద్ర కార్యక్రమాలు రిలే వింటారు.
1: सखी सहेली सुनने वाली सभी सखियों को सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार. और आज हमारे साथ है आरती. तो आरती तुमको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार. और सखी सहेली के मंच पर हो तो बहुत बहुत सभी का और तुम्हारा भी स्वागत करते हैं.
2: बिल्कुल. और मंजरी जी आपको और साथ ही सभी सखियों को सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार. और आपने स्वागत किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका.
1: क्या बात है. और बताओ कैसे.
2: बिल्कुल बहुत अच्छे हैं. और अब आज आज गणेश चतुर्थी का दिन है तो बस उसकी तैयारियां चल रही थी और अब प्रोग्राम कर रहे हैं आप यहाँ के.
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि इतने दिन से सब लोग ने भक्ति भाव से गणपति जी की पूजा करी है तो धीरे धीरे उनका विदाई का दिन भी करीब आ रहे हैं. तो मतलब ऐसी बात ही है दिल की गहराइयों से निकली हुई कि मन उदास सा हो जाता है.
2: बिल्कुल. जब कोई जाता है ना जो दिल के एकदम करीब हो जाता है वो जब जाता है ना तो थोड़ा सा दिल दुखता तो है ना.
1: बिल्कुल दुखता है.
2: लेकिन फिर हमें ये भी तो आशा रहती है ना कि अब अगले वर्ष वो जल्दी से आएंगे.
1: बिल्कुल. वो कहीं गए नहीं होते हैं, हमारे पास ही रहते हैं, हम उन्हें रोज याद करते हैं उन्हें. तो बहुत अच्छा लगता है कि जब हम किसी अपने को याद कर रहे हैं. तो आज हम लोग जो अपने सखी सहेली के विषय लेकर आए हैं उन पर बात कर लेते हैं. हाँ. कि जो हमारे विषय है कि उपयोगी टिप्स, यानी घर में जो हमारा एक फ्रिज होता है
2: सबसे समझ लो उसे कहते हैं स्टोरेज रूम कह सकते हैं.
1: हाँ. खाद्य पदार्थों का स्टोरेज रूम होता है. तो उसमें सामान रखने की भी एक कला होती. तो आप सब हमारी बहनें या भाई लोग भी जो भी हैं अपने फ्रिज में आप कैसे सामान को रखती हैं उसकी छोटी छोटी सी बातें संदेश में लिखकर भेज सकते हैं. तो
2: बिल्कुल लिख के भेजिए कि आप एकदम ठूंस देते हैं जल्दी से सब्जी वगैरह लेकर आए, कुछ भी लाए, ठूंस दिया और जल्दी से उसको कस के दरवाजे को बंद कर दिया ऐसा करते हैं या अच्छे तरीके से उसको लगा के रखते हैं. ये आप हमें बताइए आप कैसे रखते हैं. और साथ ही आज हम बात करेंगे समुद्र के बारे में. सोचो एक अंतरिक्ष है एक समुद्र है, मतलब दोनों अथाह है जिनका कोई पार नहीं. और साथ ही इतनी रहस्यमयी दुनिया है ना ये, चाहे अंतरिक्ष हो चाहे समुद्र हो. पता नहीं कब से शायद हम शुरू से ही इसके बारे में अनुसंधान कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो समुद्र है बहुत गहराई में जो है

0: की, तो वो हमें भी नहीं पता चल पाया है, अभी भी हम
1: ये सब
0: चौंक जाते हैं।
1: इतनी अद्भुत हैं, मतलब अद्भुत दुनिया ही है,
0: बिल्कुल।
1: और उसमें समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो भी बड़ी अद्भुत है, कई सारी चीजें उसमें अंदर छुपी होती हैं और बहुत गहरा होता है। जैसे हम ही लोग इंसान ही है, तो हर इंसान का मन भी बहुत गहरा होता
0: हाँ।
1: है, वो कब क्या सोच ले कुछ पता नहीं चलता है।
0: कहते ना जो इंसान है वो जो सारे तत्व हैं पृथ्वी के उससे मिलकर बना है,
1: बिल्कुल,
0: चाहे वो अंतरिक्ष हो या समुद्र की गहराई हो जो उसके मन में छुपी होती हो,
1: बिल्कुल।
0: है ना।
1: तो इस पर बातें करेंगे, और मुझे कुछ कहना है कि भाई इसमें आप बताएं कि कब किससे रूठे, ताजा रूठे कि 2 महीने पहले, एक हफ्ते पहले, कि आज सुबह सुबह रूठे,
0: आरती मंजरी से रूठ गई या मंजरी आरती से रूठ गई।
1: तो इस तरह के कुछ अपनी यादें ताजा करेंगे। और कहानी पद्मश्री की है, तो उसमें बात करने हम लोग करने वाले हम लोग उषा बारले का, जो पंडवानी लोक गायिका है, तो इनके बारे में भी बात करेंगे। और फिलहाल तो हम लोग जैसे मन की बात कर रहे थे कि मन गहरा होता है, तो कभी कभी कोई मन को लूटने की भी बात करने लगता है
0: और
1: ना।
0: जब एक कोई गीत छिड़ जाता है ना तो मन खुश हो जाता है।
1: चलो तो गीत सुन लेते हैं।

तो आरती देखो कितना प्यारा सा ये गीत था, है ना। तो ऐसे ही जब हम लोग कहीं समुद्र की सैर के लिए जाते हैं या समुद्र के आसपास जाते हैं, तो वहां की जो

0: एक हवा आती है दूर से आती हुई, एक शीतल सी
1: ठंडी
0: हवा
1: हवा।
0: होती है, ठंडी हवा होती है, कुछ समुद्री हवा का अलग एक अलग सी एक सुगंध होती है, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। और पानी देखकर तो वैसे भी लगता है कि बस अपने पैर डाल लो उसमें, आगे लहरों के संग थोड़ा सा मस्ती कर लो, है
1: बिल्कुल
0: ना। तो हमारे साथी ने एक संदेश में लिखकर भेजा है, तो पहले संदेश उनका ले लेते हैं। लिखते हैं कि लहरों का एक सुहाना संग, अथाह नीला विशाल रूप, क्षितिज जहां आकर झुकता है, खिलती जहां सुनहरी धूप, रेत पर आकर रुक जाती है, गीत सुनाती चंचल धार, गहराई में छिपे रहस्य सिखाती समता और प्यार। बहुत सुंदर सी लाइनें आपने भी लिखकर भेजी हैं। और पता है, दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें जितना जानो उतने ही गहरे होते जाते हैं। और सच पूछो तो हमने जब से अंतरिक्ष को खोजना, उसे जानना शुरू किया, तब से, या शायद उससे पहले भी, हम जमीन पर सबसे बड़े रहस्य की खोज में लगे हुए हैं। वो रहस्य है अथाह समुद्र, जो आज भी एक पूरी तरह खोजा नहीं जा सका आती।
1: बिल्कुल। और जो समुद्र हमें ऊपर से शांत और सुंदर दिखाई देता है, उसके नीचे एक पूरी की पूरी अद्भुत दुनिया बसी हुई है, क्योंकि नीचे बहुत कुछ है। नीचे पेड़ पौधे बड़े बड़े, वो अलग तरीके के पौधे हैं जो सिर्फ पानी में उगते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, ज्वालामुखी हैं, सब कुछ है इसके नीचे। और हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, और इस विशाल जलराशि का बड़ा भाग महासागरों में है। यानी अगर धरती को एक बड़ा सा घर माने तो उसका बहुत बड़ा हिस्सा पानी का ही है।
0: बिल्कुल। और समुद्र के अंदर कितने सारे रत्न भी छुपे हुए हैं, तो वो
1: बिल्कुल
0: सब चीजें भी हमें मिल जाती हैं। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इंसान ने चांद तक पहुंचकर वहां कदम रख दिया, लेकिन समुद्र की गहराइयों में, जैसा तुमने पहले भी कहा था, आज भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं।
1: हाँ
0: समुद्र के अंदर छोटी छोटी मछलियों से लेकर विशाल काय व्हेल तक, अनगिनत और लाखों तरह के जीव जंतु, शैवाल वगैरह पाए जाते हैं, जो ऐसे लगेंगे पेड़ पौधे हैं, लेकिन नहीं, जब उनके पास जाओगे तो वो ऐसे फैलते हैं और आपको पकड़ने कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल
0: तो भाई, ऐसे समुद्री यात्रा ऐसी आसान नहीं है, बहुत ध्यान भी रखना पड़ता है।
1: बिल्कुल।
0: तो
1: और यहाँ कोई अपने रंग बदलकर दुश्मन से बचता है, ऐसे जीव हैं जो, तो कोई अंधेरे में चमकता है, जेलीफिश वगैरह जो रहती हैं, और कोई इतनी गहराई में रहता है जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती है, और बहुत ज्यादा जो गहराई होती है वहां पे तो घना अंधेरा ही रहता है, रोशनी भी नहीं पहुंच पाती है। तो समुद्र के कुछ जीवों में बायोल्यूमिनेंसिस, यानी कि अपने शरीर से प्रकाश पैदा करने की क्षमता होती है, जो प्रकाश अपने आप अपना रोशनी कर देते हैं अपने चारों तरफ।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और जरा सोचिए, सोच कर देखो ना आरती, कि चारों तरफ अंधेरा और अचानक कोई समुद्री जीव नीली हरी रोशनी से चमक उठे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे समुद्र के अंदर चारों तरफ मतलब ऐसा लगेगा समुद्र के अंदर आसमान और तारे वहां पर उतर आए हैं। जैसे अंतरिक्ष का एक हिस्सा समुद्र की गहराई में भी बसा हो। इतना ही नहीं, जरा सोचिए, क्या कभी किसी ने समुद्र के अंदर रंग बिरंगे जंगल की कल्पना की है? समुद्र में मौजूद प्रवाल भित्तियां यानी कोरल्स रीफ्स कुछ ऐसी ही दिखाई देती हैं।
1: बिल्कुल। और जो महत्वपूर्ण आवास है इनके, और लाल पीले नारंगी और कई दूसरे रंगों से सजे हुए ये क्षेत्र जो है वो अनेक समुद्री जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास बने हुए हैं, और इनके आसपास छोटी बड़ी मछलियां तैरती दिखाई देती हैं, और ऐसा लगता है जैसे कि पानी के अंदर कोई रंगीन शहर बसा हुआ पूरा, जो सिर्फ पानी के जीव रहते हैं जहां पर। और समुद्र की गहराइयों में कोई बहुत सी ऐसी गुफाएं हैं, सुरंगें हैं, जिनमें से बहुतों को तो हमने खोज लिया, लेकिन अभी बहुत सी ऐसी हैं जिनको हमने खोजा भी नहीं, अभी खोज भी नहीं पाए उनको।
0: और देखो, हमारे एक साथी भी लिख रहे हैं संदेश में कि मैं देश विदेश के कई समुद्रों की सैर कर चुकी हूँ, बोट क्रूज और स्टीमर आदि से, कई जगह गोवा, मद्रास, अमेरिका, इजिप्ट, थाईलैंड आदि जगह बहुत घूमी हूँ। इजिप्ट में तो एक सप्ताह तक स्टीमर पर ही रही, जहां स्टीमर रुकता था वहां की जगह पर उतरकर घूमती थी। कितनी सुंदर सी अपनी यादें इन्होंने ताजा करी हैं। और एक लिखते हैं कि प्राकृतिक भूगोल के जलमंडल विषय बहुत रोचक है, उष्ण और शीतल सामुद्रिक धाराएं, महादेशीय छज्जा, अंतरीप खाड़ी, सागर, महासागर, उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, ज्वारभाटा आदि अनेक अनुसंधान के विषय बाकी हैं, इन्होंने लिखा। बहुत अच्छी सी जानकारी हमारे साथियों ने दी है।
1: और हम बात कर रहे हैं तो समुद्र की जो गुफाएं हैं वो समुद्री लहरों, भूकंपों और ज्वालामुखी के कारण ही बनती हैं वो, क्योंकि ऐसा नहीं कि ऊपर ही विस्फोट होते हैं, अंदर भी होते रहते हैं। और समुद्र में हजारों तरह की सुरंगें भी हैं, लेकिन ये खूबसूरत दुनिया आज समुद्री तापमान में बदलाव और प्रदूषण जैसी समस्याओं से प्रभावित ही हो रही है। समुद्र केवल घूमने फिरने और छुट्टियां मनाने की जगह नहीं है, समुद्र पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है पूरी तरीके से, और जल चक्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, और समुद्री जीवों के साथ साथ इंसानों के जीवन से भी बहुत गहरा गहराई से जुड़ा हुआ है।
0: क्योंकि देखो ना, मौसम से लेकर खाना, व्यापार तक

0: समुद्र का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है और जहाजों के बिना दुनिया में बहुत सी वस्तुओं का आयात या निर्यात नहीं किया जा सकता है। जहाज तेल का हो चाहे गैस, गेहूं, चावल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार और कपड़े जैसे वस्तुओं का परिवहन करते हैं। इसीलिए समुद्र को साफ रखना केवल समुद्र की चिंता नहीं बल्कि हमारे अपने भविष्य की चिंता भी। अगर समुद्र गंदा होता जाएगा तो जो जहाज चल रहे हैं उनको उनके मार्ग में रुकावट आएगी।
1: बिल्कुल,
0: पहली
1: और
0: बात तो
1: सबसे बड़ी चीज है जो समुद्री जीव जंतु हैं, समुद्री जो प्रवाल हैं, ये बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। ठीक है, अगर समुद्र के अंदर के जीव जंतु जब खत्म होने लगेंगे ना, तो पूरे पूरे जो पृथ्वी का जो चक्र चलता है ना,
0: हाँ,
1: वो जीवन चक्र प्रभावित होगा पूरी तरीके
0: बिल्कुल
1: से।
0: सही बात है, तो इसलिए उसका
1: बहुत
0: बहुत ध्यान
1: जरूरी
0: रखना
1: है,
0: जरूरी
1: बिल्कुल।
0: है। और आज समुद्र के सामने प्लास्टिक प्रदूषण, समुद्र के बढ़ते तापमान और अन्य पर्यावरणीय चुनौतियां भी मौजूद है, और इन चुनौतियों से निपटने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें, कचरा नदियों और समुद्रों में ना फेंके, समुद्र तटों को गंदा ना करें, और सबसे जरूरी, प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपना साथी समझना पड़ेगा। समुद्र हमें सिखाता है कि प्रकृति जितनी दिखाई देती है उससे कहीं अधिक विशाल, जटिल और अद्भुत है।
1: बिल्कुल, और कभी शांत, कभी उग्र और कभी रहस्यमय समुद्र जो है वो प्रकृति के हर रूप को अपने भीतर समेटे हुए है। और यही कारण है कि समुद्र को देखते ही हमें केवल पानी का विस्तार नहीं दिखाई देता बल्कि प्रकृति की विराटता, जीवन की विविधता और उस अनदेखी दुनिया का एहसास भी होता है जिसे जानने की जो हमारी प्रक्रिया है, जो यात्रा है, वो भी चल रही है।
0: तो चलो इसी के साथ एक गीत का भी आनंद
1: बिल्कुल,
0: ले लिया
1: सुनते
0: जाए।
1: हैं।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन?
1: तो आरती हाँ। देखो हमारे साथी क्या लिखते हैं बताओ।
2: हाँ, तो हमारे साथी जो लिखते हैं कि समुद्र जीवन पृथ्वी के महासागरों और खारे पानी में रहने वाले पौधे जानवर और सूक्ष्म जीव हैं। पानी में तैरने वाले सूक्ष्म पौधे जो खाद्य जाल का आधार है, जेलीफिश हो गई, ऑक्टोपस है, केकड़ा है, प्रवाल है, बहुत सारे जानवर हैं जिन्होंने लिख के दिए। और साथ ही एक हमारे साथी जो कहते हैं कि समुद्र हमारे ग्रह का दिल है, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसमें अधिकांश जो भाग है वो विशाल महासागरों का है। समुद्र केवल पानी का एक भंडार नहीं है बल्कि एक रहस्यमय जीवंत और अत्यंत आवश्यक दुनिया है। और आज हमने अपने विशाल महासागरों के बारे में जो तलाश किया है तो केवल 5-10% हिस्से को ही हम तलाश कर पाए हैं, और ये बताता है कि समुद्र की गहराई में न जाने कितने रहस्य आज भी दफन है।
1: बिल्कुल, और हमारे साथी ने और भी जानकारी दी है, लिखते हैं कि समुद्र में विशालकाय ब्लू व्हेल जो इस धरती का सबसे बड़ा जीव है से लेकर सूक्ष्म प्लैंकटन तक इसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगी मछलियां, जेलीफिश, ऑक्टोपस और शार्क जैसी प्रजातियां इसे एक काल्पनिक दुनिया जैसा रूप देती हैं।
2: और साथ ही जो लिखते हैं कि समुद्र के गहरे हिस्सों जैसे मारियाना ट्रेंच जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है, वहां पर सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती, वहां का तापमान 0 के करीब होता है और पानी का दबाव बहुत अधिक होता है। इसके बावजूद वहां ऐसे बायोल्यूमिनेंट्स जो जीव होते हैं वो रहते हैं जो अपने शरीर से रोशनी पैदा करते हैं, मतलब जहां पर पानी क्या सूरज की किरणें तक नहीं पहुंच पाती वहां पर वो जीव अपने आप जगमगाते हैं।
1: बिल्कुल, और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भाई समुद्र की भी एक रोचक दुनिया है जिसमें तमाम रहस्य छिपे हुए हैं, जिनमें बहुत सी बातें हम जानते हैं और बहुत सी बातों से अनजान भी हैं। पृथ्वी का 71% हिस्सा समुद्र ही है, जिसमें तरह तरह के जीवों और वनस्पतियों का भंडार है। हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है इसका 60-80% तक समुद्र ही देता है। समुद्र के अंदर भी एक बड़ी पर्वत श्रृंखला है जिसे मिड ओशियन रिट्स कहा जाता है, जो बाहर से नहीं दिखती। इसी तरह समुद्र की गहराई का रहस्य आज तक बना हुआ है। प्रशांत महासागर में एक ऐसी जगह है जिसे मारियाना ट्रेंच कहते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरी, और समुद्र अद्भुत जीवों की शरण स्थली भी रहा है जो इतने विशालकाय हैं बड़े बड़े जहाजों को भी रोक लेते हैं। समुद्र से हमें लाभ तो बहुत है किंतु मानव सभ्यता की विकास यात्रा ने उसे कचरे का एक गोदाम बनाने की ठानी है। ये दुखद है, आने वाले दिनों में भारत समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक भरता हुआ समुद्र में लिखा है इन्होंने कि भरता समुद्र में प्लास्टिक का कचरा एक बहुत बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इससे समुद्री जीवों को भी नुकसान पहुंच रहा है और हमें भी ये एक दिन बर्बादी की गर्त में पहुंचा देगा, इन्होंने लिखा है ऐसा। तो ये चीज का ध्यान रखने वाला है कि हमें अपने समुद्र को साफ भी रखना है।
2: बिल्कुल, और एक साथी हैं जो लिखते हैं कि समुद्र जो कोरल रीफ है उसके बारे में इन्होंने बताया है कि क्या है ये। तो इन्हें समुद्र का वर्षावन कहा जाता है। तो ग्रेट बैरियर रीफ जैसी जगह है जहां लाखों समुद्री जीवों को आश्रय देती हैं और पानी के नीचे एक बेहद खूबसूरत और रंगीन इकोसिस्टम का निर्माण करती हैं। धरती के लिए महत्व जिसका क्या है वो बताते हैं कि हमें सांस लेने के लिए जो ऑक्सीजन मिलती है उसका 50% से अधिक हिस्सा समुद्र में रहने वाले पौधों जो वहां पे होते हैं उसके द्वारा तैयार किया जाता है। समुद्र के वैश्विक तापमान और मौसम को नियंत्रित करने में भी मुख्य भूमिका को निभाता है जो समुद्र है। और समुद्र की जो रोचक दुनिया है वो इतनी सुंदर है और रहस्यमयी है कि ये हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत जरूरी है। ये हमें याद दिलाती है कि अगर हम पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखना है हमें, तो हमें महासागरों का सम्मान करना होगा और उन्हें प्रदूषण से मुक्त रखना होगा। समुद्र की सुरक्षा ही मानवता की सुरक्षा है।
1: बिल्कुल सही कहा। चलो इसी के साथ

0: उमदा बास्केट में धोतिया लपेट के धल लियो बन सारे अपन नरब दशा पड़ बेचा।
1: जाने माने स्टैंड अप कॉमेडियन उदय दहिया
0: तो भाई बाने कोप्पा भर के पानी लिया और बाँ में लेके टिको तो माने गट गट गट करके एक कोप्पा पानी पी गो।
1: आ रहे हैं विविध भारती पर।
2: आप चाहे कुछ भी कहे मामा श्री, लेकिन न्यूज ग्वाला कृष्ण को मैं किसी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा।
1: मैटिनी शो 26 सितंबर दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: तो देखो आरती

ये अब समय हो चला है अंतराल का, तो मिलते हैं अंतराल के बाद, फिर हम लोग बातें करेंगे अपनी जो हमारी सखी विशेष हैं उनकी बातें करेंगे, और अंतराल के बाद मिलते हैं फिर।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है आरती, और कार्यक्रम चल रहा है सखी सहेली। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं कहानी पद्मश्री उषा बारले जी के बारे में, जो पंडवानी लोक गायिका हैं। तो कहते हैं लोक कला केवल मनोरंजन नहीं होती, बल्कि वो तो किसी मिट्टी की अमिट याद होती है, किसी समाज की पहचान होती है, और पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं की जीवित आवाज होती है। ऐसी ही कलाकार हैं उषा बारले, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा पंडवानी गायिका गायकी को देश की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के संगीत प्रेमियों तक पहुंचाया।
1: और 2 मई 1968 में उषा बारले जी का जन्म भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। उनकी पिता का नाम खाम सिंह जांगड़े और माता का नाम धनमत बाई था। बचपन से ही लोक संगीत के प्रति उनका गहरा आकर्षण था। महज 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने पंडवानी सीखना शुरू कर दिया था।
0: और सोचिए, जिस उम्र में बच्चे खेल कूद और खिलौनों की दुनिया में खोए रहते हैं आरती, उस उम्र में एक छोटी सी बच्ची महाभारत की कथाओं और लोक संगीत की दुनिया में अपना रास्ता खोज रही थी। उनकी यही बाल रुचि आगे चलकर उनके जीवन की पहचान बन गई।
1: बिल्कुल। अब जरूरी है ये भी बताना कि पंडवानी गायकी जो होती है वो आखिर है क्या। तो पंडवानी का अर्थ है पांडवों की वाणी या पांडवों की कथा। ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध लोक गायन परंपरा है, जिसमें महाभारत की कथाओं को लोक भाषा, संगीत, अभिनय और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है।
0: और इसमें कलाकार केवल गाता नहीं है, बल्कि कथा के पात्रों और भावनाओं को अपनी आवाज और हाव भाव से जीवंत कर देता है। और इसी कला को उषा बारले ने अपनी आवाज से एक नई ऊर्जा और पहचान दे दी। जब किसी भी कलाकार की प्रशंसा होती है तो उसकी उस ऊंचाई तक पहुंचने की यात्रा में गुरु का स्थान बेहद महत्वपूर्ण होता है आरती।
1: बिल्कुल। और उषा बारले ने प्रारंभिक जो प्रशिक्षण था उसके बाद महान पंडवानी कलाकार तीजन बाई से भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनके मार्गदर्शन ने उषा बारले की कला को और निखारा। पंडवानी की साधना आसान नहीं थी, इसमें केवल सुर और ताल ही नहीं बल्कि उसमें कथा की समझ भी होनी चाहिए, अभिनय होना चाहिए, संवाद, भाव और मंच पर तत्काल प्रस्तुति की क्षमता भी बहुत आवश्यक होती
0: है। बिल्कुल सही कहा तुमने। और उषा बारले ने वर्षों के मेहनत से इन सभी पक्षों को अपनी कला का हिस्सा बनाया। उषा बारले के जीवन में कठिन दौर भी आए, जब गृहस्थी चलाने के लिए वो फल बेचा करती थी, लेकिन परिस्थितियां उनकी कला के रास्ते में स्थायी बाधा नहीं बन सकी। उन्होंने अपनी लोक कला को छोड़ा नहीं, बल्कि समय के साथ वही कला उनकी पहचान बनती चली गई।
1: बिल्कुल। पंडवानी के अलावा अनेक लोक विद्याओं में भी वो पारंगत हैं। और धीरे धीरे उषा बारले की आवाज बड़े मंचों तक पहुंचने लगी। उन्होंने भारत के कई शहरों में पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां दी। इतना ही नहीं, उनकी कला की गूंज विदेशों तक पहुंची, यानी जिस लोक कला की जड़ें छत्तीसगढ़ की मिट्टी में थी उसकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच चुकी थी।
0: उषा बारले की विशेषता केवल पंडवानी गायन तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपनी कला के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों और सामाजिक जागरूकता से जुड़े संदेश भी लोगों तक पहुंचाए।

0: कई गंभीर बीमारियों और सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने में भी अपनी लोक कलाओं का इस्तेमाल किया।
1: बिल्कुल, उषा बारले आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र रायपुर की ए ग्रेड कलाकार भी रही हैं। उन्होंने आकाशवाणी की विभिन्न चैनल्स पर पंडवानी और पंथी की प्रस्तुतियां भी दी हैं। वर्षों की साधना और लोक कला के प्रति समर्पण के लिए उन्हें कई सम्मान मिले और वर्ष 2023 में राष्ट्रपति द्वारा उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया।
0: इतने गर्व की बात है कि उन्होंने अपनी कला को आगे बढ़ाया।
1: बिल्कुल।
0: तो इस जब हम इनकी कहानी सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो समझ में आता है कि हमारे अंदर जो भी कला है तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए शिक्षा लें, बाकायदा गुरु के पास जाएं और सीखें। और मेहनत, अनुशासन बहुत जरूरी, लगन होना चाहिए, नियमित अभ्यास होना चाहिए। तो आप छोटे से ही बच्चा अगर शुरुआत कर दे, छोटे से ही बच्चे को आप सिखाना शुरू कर दे तो आगे चल करके बहुत अच्छा आगे जा सकता है।
1: बिल्कुल, आपके अंदर कोई हुनर है तो उसको निखारेंगे तो आपको उसकी उसकी बारे उसकी उसकी फायदा भी उठाने को मिलेगा फिर।
0: तो चलो सुनते हैं एक गीत।

0: द फैमिली मैन से दर्शकों का दिल जीतने वाले जेके, कुछ अनसुने किस्से, कुछ मजेदार राज। दमदार किरदार, कैमरे के परे उनकी क्रिएटिव दुनिया, जिंदगी की बातें और ढेर सारी मस्ती भी।
1: मांगा जो उसने एक सितारा, हमने जमीन पे चांद बुला।
0: सुनिए एक दिलचस्प बातचीत अभिनेता शारिब हाशमी के साथ।
2: मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एंटरटेन करने के लिए ही
3: पैदा हुआ।
2: जब मैं लोगों को हंसाता हूँ तो मेरा 2 लीटर खून बढ़ जाता है।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 29 सितंबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: तो आरती भाई, ये याद रखना बड़ा

0: मुश्किल भी है और आसान भी है. बताओ तुम कब किससे रूठी? हमारे साथी ने भी बहुत सारे लिखे हैं संदेश, तुमने जवाब नहीं दिया, हंस के टाल दिया. चलो अच्छा,
1: हाँ
0: तुम्हारा बताने का मन नहीं है
1: नहीं,
0: ना?
1: बताने की नहीं है, मैं

0: है कि किससे रूठना है और कब मान जाना है। अपने वही तो होते हैं जिनसे हम नाराज भी हो सकते हैं और फिर थोड़ी देर बाद हंसकर बात भी कर लेते हैं। रिश्तों में रूठना रहे मगर इतना नहीं कि मन में दूरियां बस जाएं। कभी अपनी बात कह दीजिए, कभी सामने वाले की सुन लीजिए, क्योंकि रिश्ते जीतने के लिए नहीं निभाने के लिए होते हैं। बिल्कुल सही बात इन्होंने कहा है कि रूठने की क्या जरूरत है, रूठे हैं तो भी मना भी लीजिए, है ना।
1: बिल्कुल, क्योंकि ना ये रूठना मनाना तभी अच्छा लगता है, ये छोटी मोटी जब हंसी की नोकझोंक हो। जैसे कि एक हमारे साथी लिखते हैं कि धर्म पत्नी अगर ना रूठे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मुझ में एक काबिलियत है कि मैं कोई ना कोई मनाने वाला फिल्मी गीत सुर में गाकर सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी को मना ही लेता हूँ, और वो मान जाने के बाद मुझे अदरक इलायची वाली चाय जरूर पिलाती है।
0: क्या
1: मतलब
0: बात
1: ये
0: है
1: चाय पीने के लिए गाने गा
0: मना
1: के,
0: लेते
1: हाँ
0: हैं, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: मना लेते हैं।
0: कितनी अच्छी सी बात इन्होंने लिखकर भेजी। और एक लिखते हैं कि भाई कब किससे रूठे, ये बड़ा रोचक मुद्दा है। पहले मैं अपनी कविता सुनाना चाहूंगा। तू गंगा सरी की पावन है, जन जन की मन भावन है, तू हिंदी की आन बान शान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू देश प्रेमियों का सम्मान है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, तू भारतेंदु की पूजा है, तेरा जैसा नहीं दूजा है, तू रेडियो नहीं स्वाभिमान है, हम वेद भारती से रूठ जाए जाते, जब आप हमारे मनपसंद गाने नहीं चलाते हो, दादी नानी के जमाने के गाने बजाने बजाने बजाइए, हमारे गाने नहीं बजाते, इसलिए हम वेद भारती से रूठ जाते हैं। भाई वेद भारती रूठने की जरूरत नहीं है आपको। बहुत सारे दिन भर प्रोग्राम चलते रहते हैं, उसमें देखिए आप सुनेंगे तो तरह तरह के गाने बजते हैं,
1: नए भी बजते हैं,
0: नए
1: पुराने भी
0: बजते पुराने
1: बजते हैं।
0: सब बजते हैं, और
1: हाँ
0: आप उनको सुनिए, उनका आनंद लीजिए। अब ऐसे रूठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना आरती।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये लिखते हैं, आगे लिखते हैं कि कभी कभी तो हम माँ से रूठ जाते हैं,
1: हाँ
0: तभी माँ कहती है ऐसे रूठने से काम नहीं होता, रूठने से तनाव आता है, हंसी ठिठोलिया करते रहना चाहिए। भाई बिल्कुल हंसी ठिठोली कीजिए, लेकिन हमारे वेद भारती से जुड़े रहिए और रूठिए मत, गाने आप आनंद लेते रहिए।
1: बिल्कुल। और साथ ही हमारे एक साथी लिखते हैं कि रूठना और मनाना इंसानी फितरत का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। जब हम किसी से रूठते हैं तो असल में हम उससे नफरत नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने हक और प्यार का इजहार कर रहे होते हैं। लेकिन जिंदगी के इस सफर में ये समझना बेहद जरूरी है कि हम कब, किससे और कितना रूठना चाहिए हमें। गलत इंसान से या गलत वक्त पर रूठा जाए तो रिश्ते सुधरने की बजाय बिखर जाते हैं।
0: बिल्कुल सही बात इन्होंने कही है, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। और आगे लिखते हैं कि हम हर राह चलते इंसान से नहीं रूठ सकते, रूठा सिर्फ उसी से जाता है जिससे हमें प्यार पाने की उम्मीद होती है। माता पिता और परिवार, इनसे रूठने में एक अलग ही सुकून है, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वो हमें मना ही लेंगे। यहाँ रूठना प्यार को बढ़ाता है, और जीवन साथी या पार्टनर प्रेम संबंधों में रूठना मनाना एक टॉनिक की तरह काम करता है। ये दिखाता है कि आप उनके करीब हैं। सच्चा दोस्त, दोस्तों से रूठना केवल एक अधिकार है जो दोस्ती को और गहरा करता है। बहुत सुंदर सी बात लिखकर भेज रहे हैं।
1: और साथ ही एक हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि रूठना रिश्तों की वो डोर है जिसे बहुत संभाल कर खींचना पड़ता है। ज्यादा ढील दी तो रिश्ता बेअसर हो जाएगा, और ज्यादा जोर से खींचा तो डोर टूट जाएगी। इसलिए केवल उनसे रूठिए जो आपके मौन का दर्द समझते हों और आपकी खामोशी को पढ़ते ही आपको गले लगाने के लिए दौड़ पड़े।
0: और एक साथी लिखते हैं कि भाई बचपन में मैं अपनी माँ से रूठ जाती थी तो माँ बड़े ही प्यार से मना लिया करती थी, और अब तो रूठना ही भूल गई हूँ, बस मनाने का काम ही कर रही हूँ बस। तो ऐसे रूठना तो चलता रहता है जिंदगी में, देखो हर दिन कभी हम अपनों से रूठ जाते हैं, कभी मतलब किसी का फोन नहीं आया तो रूठ गए, किसी ने
1: हाँ,
0: मैसेज नहीं किया तो रूठ
1: किसी ने
0: गए,
1: हमें कुछ मिठाई नहीं खिलाई तो हम रूठ
0: तो
1: गए।
0: हम रूठ गए, है ना।
1: एक हमारे साथी हैं मंजरी जो लिखते हैं कि कब किससे रूठें, किसी से रूठने का कोई ना कोई बहाना चाहिए, मनाने के लिए गाना गाना चाहिए। रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, रूठे हों सनम तो फिर क्या है, हमको मनाना आता है। रूठा है तो मना लेंगे, बिगड़ा है तो बना लेंगे, रोता है तो हंसा लेंगे, यूं रूठो ना हसीना। इन्होंने सारे फिल्मों की रूठो वाली जो लाइन थी वो लिख के भेज दिए हैं।
0: जब इन्होंने गाने भेज ही दिए हैं तो हम क्यों ना इनको एक गाना ही सुना
1: बिल्कुल
0: देते
1: सुनवा
0: हैं।
1: देते हैं।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो आरती हमारे साथी क्या लिखते हैं?
3: हाँ, हमारे साथी हैं जो लिखते हैं कि किससे रूठे, रिश्तों में नाराजगी की समझ होनी चाहिए और साथ ही रिश्तों में नाराजगी की समझ की रूठना और मनाना मानवीय रिश्तों के सबसे खूबसूरत और संवेदनशील पहलुओं में से एक है। नाराजगी इस बात का प्रमाण होती है कि हम उस रिश्ते में पूरी तरह से निवेशित हैं, यानी कि उसमें डूबे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जीवन के इस भागदौड़ में हमें कब किससे और कितना रूठना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे या हर बात पर रूठना रिश्तों की नींव को कमजोर कर सकता है, जबकि सही समय पर व्यक्त की गई नाराजगी रिश्ते को और मजबूत बना सकती है। तो हम किससे रूठते हैं? हम कभी किसी अजनबी से नहीं रूठते। रूठने का अधिकार हम सिर्फ उन्हें देते हैं जिन्हें हम अपने दिल के सबसे करीब मानते हैं, जैसे वो माता पिता हैं, जीवन साथी है, भाई बहन है या कोई बेहद करीबी दोस्त। तो रूठने के पीछे एक छिपी हुई उम्मीद होती है कि सामने वाला हमें प्यार से मनाएगा और ये एक तरीके का मूक संवाद है। तो इन्होंने बहुत बहुत कुछ लिखा है इस बारे में, तो ये एक समझ लीजिए उसका जिस्ट है, उसका एक निचोड़ है।
2: क्या बात है। और हमारे साथी लिखते हैं, अपनों से तब रूठना चाहिए जब सामने वाला आपकी खामोशी या आपकी कीमत समझे, लेकिन बेवजह या छोटी छोटी सी बातों पर किसी से नहीं रूठना चाहिए। किसी अपने से अनबन होने पर उन्हें थोड़ा शांत होने का समय दें, गुस्सा कम होने पर प्यार से अपनी बात रखें, रिश्तों में अहंकार ना आने दें, क्योंकि मनाना भी प्यार का एक हिस्सा है। और भी आजकल डिजिटल दुनिया में रूठना कोई मायने नहीं रखता है, लोगों से मिलना जुलना जो कम हो गया है तो क्या पता चलेगा।
3: बिल्कुल। और साथ ही एक हमारे और साथी हैं जो लिखते हैं कि ये सोचने से पहले कि किससे रूठें, ये जरूर सोच लीजिए

0: कि कहीं हमारी नाराजगी के कारण कोई अपना हमसे हमेशा के लिए दूर तो नहीं हो जाएगा। रिश्तों में जीत रूठने की नहीं बल्कि साथ निभाने की होती है। जिंदगी बहुत छोटी है, पता नहीं कौन सा रिश्ता कब याद बन जाए और कौन सा अपना कब दूर चला जाए। इसलिए जहाँ प्रेम है वहाँ अहंकार को थोड़ा पीछे रखिए, जहाँ अपनापन है वहाँ छोटी छोटी गलतियों को माफ करना सीखना चाहिए।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि भई विचार, जीवन, रिश्तों और हमारी भावनाओं की गहराइयों को छूता है। रूठना एक ऐसी भावना है जो केवल वहीं पैदा होती है जहां कोई गहरा रिश्ता या हक होता है। हम हर किसी से नहीं रूठते और ना ही कोई हमें मना सकता है। रूठने में एक मासूमियत और प्यार की मांग होती है। जब हमारा कोई बहुत करीबी हमारी बात नहीं समझ पाता या हमारी भावनाओं को नजरअंदाज करता है तब रूठना स्वाभाविक है। रूठना प्रेम की एक अनकही भाषा है। ये तभी तक सुंदर है जब तक रिश्तों में दूरियां ना बढ़ाएं बल्कि मनाने के बाद प्यार को और भी गहरा दें। तो इसी के साथ एक गीत सुन लेते हैं,
0: बिल्कुल
1: तेरी मेरी प्रेम कहानी।

0: कि मैंने तो छोटे छोटे डिब्बे रखे हुए हैं और मिर्च अदरक जैसे सामान होते हैं उसमें ही स्टोर करके फ्रिज में रखती हूँ। डाइनिंग टेबल का मैट जो पुराना हो जाता है उसे फ्रिज के रैक पर बिछा देती हूँ ताकि उसमें कुछ भी गिरे तो आसानी से साफ किया जा सके। वैसे बना बनाया खाना मैं फ्रिज में रखना पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रिज का रखा हुआ खाना मुझे पसंद नहीं है। बाय चांस कभी रखना हो तो अच्छी तरह पैक करके रखती हूँ और हर 2 से 3 दिन में चेक करती रहती हूँ कि कुछ खराब तो नहीं हो रहा है या किसी तरह का कोई स्मेल तो नहीं आ रहा है।
1: बिल्कुल। और फ्रिज में सामान रखते समय बचा हुआ भोजन बंद डब्बों में रखना चाहिए, सब्जियों को धोकर सुखाकर रखना चाहिए, दूध दही से ढककर रखना चाहिए, पनीर को खुले बर्तन में पानी में रखना चाहिए। हमारी साथी ने लिखती है इस तरह की बातें। और सब्जियों को भी अलग ड्रॉअर में रखें, फल पत्तेदार सब्जियां पेपर टॉवल में लपेटे, दूध और डेयरी प्रोडक्ट को मिडिल शेल्फ पर रखें और फ्रिज को ज्यादा नहीं भरना चाहिए, ऐसी बातें लिख रहे हैं हमारे साथी। और लिखते हैं कि भाई जो भी बचा हुआ सब्जी दूध बचा हुआ खाना और कई तरह की चीजें रखते हैं तो फ्रिज में सामान रखने का मकसद ही है कि खाने पीने को की चीजों को लंबे समय तक स्टोर करना। और गर्मी में चीजें बाहर रखने से खराब जाती जबकि फ्रिज में कई दिनों तक चीजों को स्टोर किया जा सकता है। फल और सब्जियों को अलग अलग रखें, फ्रिज में फल और सब्जियों को एक साथ रखने से वे जल्दी खराब जाते हैं और कई फल जो है वो कई तरह की गैसेस छोड़ते हैं तो सब्जियां जल्दी खराब होने लगती हैं, इसलिए इनको अलग अलग शेल्फ में रखना चाहिए।
0: ठीक है। तो एक हमारे साथी तो जो लिखती हैं कि फ्रिज में सामान कैसे रखें, ये बहुत संजीदा मुद्दा है। तो फ्रिज तो होना चाहिए, इसमें दूध दही रख सकते हैं। हमारी माँ तो उसमें सब्जियां ठूस ठूस कर रख देती हैं, कभी कभी मिठाई की पेटी भी उसमें रख देती हैं। नानी मौसी को कुछ निकालना हो तो फ्रिज से ही निकालना होता है, कभी कभी तो फ्रिज में से पानी बाहर निकल आता है, इससे मम्मी गुस्सा हो जाती हैं और बहन को डांटने लगती हैं। तो उस हिसाब से आप रखिए, एक एक शेल्फ में थोड़ा थोड़ा सामान रखिए और उसको चेक करते रहिए और सफाई करते रहिए।
1: जी।

0: तो देखो बात करते करते समय बिल्कुल समाप्त
1: बिल्कुल
0: पर हो गया है,
1: दूर
0: तो
1: पास
0: हाँ
1: सारे श्रोता रहते ही
0: जी,
1: हैं।
0: तो सभी से लेते हैं विदा, सभी को मंजरी वर्मा
1: और
0: और
1: आरती श्रीवास्तव का नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: दोस्तों नमस्कार, विविध भारती के स्टूडियो नंबर एक से मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज हेलो फरमाइश कार्यक्रम के जरिए हम अपने श्रोताओं से करेंगे बातें। देश के कोने कोने से हेलो फरमाइश कार्यक्रम में श्रोताओं के कॉल्स आते हैं और इस तरह से हम अपने श्रोताओं से जुड़ते हैं, उनके बारे में, उनके इलाके के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और विविध भारती के बारे में उनकी क्या राय है इसकी भी पड़ताल करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सिलसिला। हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: संत तेजाराम नगर भोपाल से बोल रहा हूँ सर।
0: जी क्या नाम है आपका?
1: सर मैं बाबूलाल सेन बोल रहा हूँ सर।
0: बाबूलाल जी क्या करते हैं भोपाल में?
1: जी सैलून की दुकान है सर।
0: इस साल भोपाल में बारिश किस तरह की हुई है?
1: बारिश तो बहुत अच्छी हुई साहब, बढ़िया एकदम टनाटन और अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हुई, ना बाढ़ को प्रकोप हुआ ज्यादा, कुछ भी नहीं है, नाले तूफान ज्यादा उफान पे भी नहीं आए।
0: अच्छा, और भदभदा के गेट कितनी बार खुले इस बार?
1: दो तीन बार खुले सर।
0: मतलब बारिश बहुत अच्छी हुई?
1: जी, लेवल से पानी हुआ है, गेट तो अंदाज से खुले सर।
0: और आप कहाँ कहाँ पिकनिक मनाने गए इस बारिश में?
1: इस बारिश में कहीं भी नहीं गए सर।
0: अच्छा, काम में बिजी रहे।
1: जी।
0: अच्छा बताइए, कौन से गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: मूवी है तुमसे अच्छा कौन है,
0: गाने की बोल
1: आत है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो।
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो फरमाइश, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी यूनुस खान जी, उत्तर प्रदेश जिला शामली से गुलजार बात कर रहा हूँ।
0: जी कैसे हैं गुलजार साहब?
1: जी मैं बहुत अच्छा हूँ जी, आप कैसे हैं यूनुस खान सर?
0: बस बढ़िया हैं, आप लोगों से बातें कर रहे हैं। बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: आज मैं गाना सुनना चाहूंगा ना जैके पार फिल्म का, आप आने के बोल रहे थे कौन दिशा में लेके चला रहे बटुआ।
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की। रविंद्र जैन का संगीत, उन्हीं का गाना है।
1: हाँ जी,
0: और ये फिल्म कितनी बार देखी है आपने?
1: ये फिल्म मैंने 10 बार देखी है।
0: अच्छा, और गुंजा और चंदन की प्रेम कहानी बहुत अच्छी लगती है आपको?
1: हाँ जी, गुंजा का रोल बहुत अच्छा लगता है, गुंजा और चंदन का रोल। जब आखिरी माँ आ जाती है ना, आखिरी माँ का गुंजा का निकाह चंदन से हो जाता है, गुंजा की शादी।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फरमाइश पर। आपको सुनवाती है नदिया की पार फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: सर नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: गिराम हीरापुर जिला सीहोर मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ सर जी।
0: कैसे हैं परमार जी?
1: बहुत अच्छे हैं सर जी। पहली बार आपसे ही बात हुई थी, आज पीछे आपसे बात करने का मौका मिला, मेरा बड़ा सौभाग्य है सर जी।
0: अरे वाह, हमें भी अच्छा लग रहा है। कब हुई थी पिछली बार बात हमारी?
1: सर 1.5 साल करीब हो गए सर।
0: अरे बाप रे, इतना ज्यादा वक्त हो गया।
1: जी जी
0: अच्छा बताइए, सीहोर के क्या हालचाल हैं? कितनी बारिश हो रही है?
1: जी सर, हमारे इधर तो अच्छी बारिश हो चुकी है, 33 इंच बारिश हुई है, पर के 41 हुई थी पिछले साल। और अभी मौसम धूप खिली हुई है सर, बरसात का मौसम होता है लेकिन बरसात अभी गिरी नहीं है सर हमारे इधर।
0: पूरे देश में सीहोर अपने शानदार गेहूं के लिए जाना जाता है। कौन कौन सी गेहूं की किस्में होती हैं वहां पर?
1: जी सर, हमारे इधर है ना 1544 लोकबन और 8713 और जो सरबती गेहूं रहते हैं ना सर, उसमें मैं पूरे भारत में सीहोर मंडी का गेहूं और हमारे क्षेत्र का गेहूं सर।
0: बहुत ज्यादा तादाद में उधर गेहूं होता है?
1: जी हाँ सर, बहुत ज्यादा तादाद में गेहूं होता है और खाने की किस्म बहुत जोरदार रहती है हमारे क्षेत्र में सर।
0: अच्छा
1: जी,
0: मतलब जरा विस्तार से बताएं।
1: सर जो लोकबंद गेहूं है या 1544 है, इनकी रोटी बहुत अच्छी आती है सर। और जो सरबती गेहूं जिसमें पूरे भारत में हमारे क्षेत्र का नाम चलता है, उसकी रोटी बहुत मुलायम रहती है सर, सुबह से शाम तक कड़क नहीं होती।
0: अच्छा क्या बात है, आपने देखिए कितने बारीकी से हमें ये फर्क बताया है। कितनी मेहनत गेहूं के खेतों में सीहोर वाले लोग करते हैं? बहुत ज्यादा मेहनत का काम है खेतों में काम करना, है ना?
1: जी हाँ सर, मेहनत का तो काम है, हम भी किसान है सर, किसानी करते हैं
0: जी। गेहूं के अलावा और क्या क्या होता है आपके खेतों में?
1: जी सर, अभी हमने बरसात की फसल में मक्का और सोयाबीन लगाए हैं सर जी, और 1 महीने बाद हमारी फसल आ जाएगी सर जी।
0: अच्छा, सोयाबीन मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, क्या जमीन पर इसका कुछ असर पड़ता है सोयाबीन उगाने का?
1: नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, जमीन में ज्यादा मतलब कमजोर जमीन नहीं होती सोयाबीन से सर। मक्का का ज्यादातर लगातार बोएंगे तो कमजोर जमीन होती, बाकी सोयाबीन से जमीन कमजोर नहीं होती सर।
0: तो आप अदला बदली करके फसलें उगाते रहते हैं?
1: जी हाँ सर, हम इधर से इधर पलटी कर देते हैं तो फसल उसमें अच्छी भी आती है और पैदावार भी बढ़ती है सर।
0: और खाद का इस्तेमाल कितना होता है, उर्वरक का इस्तेमाल?
1: जी सर, हमारे पास कुछ मवेशियाँ भी हैं सर, तो हम पहले तो गोबर का खाद इस्तेमाल करते हैं, जब हमको कम पड़ता है तो हम रासायनिक खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जो सोसाइटी से हमें मिलता है सर।
0: और रेडियो आपके जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है, खासतौर पर विविध भारती?
1: जी सर, विविध भारती तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर जी, मेरी 8 साल उम्र थी जब से मैं सुन रहा हूँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। बताइए आज किस गाने की फरमाइश है?
1: सर आप सुना दीजिए, फिल्म का नाम है आदमी खिलौना है और गाने के बोल हैं, मत कर इतना गुरूर सूरत पे ए हसीना, ये वाला किस सुनना है सर जी?
0: आपने कहा और हमने सुनाया आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हाँ जी, मैं सुशील कुमार बोल रहा सर।
0: कहाँ से बोल रहे हैं?
1: गांव श्यामपुर, जिला यमुनानगर, तहसील बिलासपुर।
0: अच्छा, क्या हालचाल है आपके, बताइए।
1: ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। आज
0: जी
1: पहली बार मेरी कॉल लगी है सर।
0: अच्छा, हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आज पहली बार आपकी कॉल लगी है।
1: हाँ जी,
0: अब बताइए कि विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको अच्छे लगते हैं?
1: मेरे को सारे प्रोग्राम बढ़िया लगते हैं जी।
0: अच्छा, आज कौन सा गाना सुनना
1: मैं
0: चाहते हैं?
1: मेरे को एक गीत की फरमाइश है जी, वो है जी एक प्यार का नगमा है जी।
0: क्या बात है, शोर फिल्म का ये गाना सुनना चाहते हैं। आपकी फरमाइश पूरी करते हैं, आपको सुनवाते हैं ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: यूनुस खान सर को प्यार भरी नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: सर सतीश शर्मा बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से, आपका पुराना श्रोता।
0: जी सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: बस सर, पहले भी आपसे काफी बार बात हुई है।
0: अच्छा बताइए, आज किस गाने की
1: हाँ जी
0: फरमाइश लेकर आए हैं आप?
1: सर, गाना है आज नागिन फिल्म से,
0: कौन सी वाली नागिन?
1: ये सर सुनील दत्त वाली।
0: अच्छा
1: उसमें सर मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में है, तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है।
0: क्या बात है। ये जो नागिन फिल्म है, इस फिल्म को देखने में लोग डरते थे और सीटों के नीचे नजर डाला करते थे कि कहीं सांप तो नहीं आ गया।
1: हाँ जी सर, जब इसकी बीन वगैरह बजती थी ना इसमें, तो
0: हाँ
1: डर जाते थे हम।
0: कौन सी टॉकीज में देखी थी ये फिल्म?
1: टॉकीज में तो सर मैंने टीवी में ही देखी है ये।
0: अच्छा। विविध भारती के कौन कौन से कार्यक्रम आपको बहुत अच्छे लगते हैं?
1: विविध भारती का सर एक तो 12 बजे आता है जिसमें आप गाने सुनाते हैं सदाबहार नगमे में, और 1 बजे से आता है आपका, वो भी सुनता हूँ। और हेलो फरमाइश तो काफी समय से मैं कोशिश कर रहा था, बहुत समय बाद कॉल लगी है।
0: देखिए पूरे देश के श्रोता लगातार कॉल करते हैं तो ये होता है कि बहुत मुश्किल से कॉल लगता है।
1: और सर आप तो हमारे फेवरेट आरजे हैं,
0: बहुत बहुत
1: आपसे बात
0: शुक्रिया।
1: करने के लिए तो बहुत दिल से कोशिश कर रहा था मैं। काफी समय पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी, जैसे 2-3 बार हो चुकी है आपसे पहले, शायद आपको याद हो।
0: जी।
1: हाँ
0: तो
1: जी
0: बताइए कि इस समय विविध भारती के इन दिनों में सुने कौन से कार्यक्रम आपको सबसे ज्यादा यादगार लगे हैं?
1: एक तो आपका उजाले उनकी याद हो के आता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है, और सखी सहेली वगैरह ये भी सुनते हैं हम। और दोपहर में एक बजे से आता है जो आप शब्द नहीं देते हैं हमें, उसमें भी कई बार मैं भाग लेता हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं नागिन फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: ग्राम सुराना जिला रतलाम से बोल रहा हूँ, शेख हैदर खान।
0: हाँ जी, कैसे हैं हैदर जी आप?
1: बस बढ़िया है, खैरियत में है सर एकदम।
0: बिल्कुल, दुआएं बताइए।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: अच्छा,
1: ये रफी साहब की आवाज में गीत है। खुदा भी जब जमी पर आसमां से देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा।
0: बहुत ही बढ़िया गाने की फरमाइश की है भाई आपने। जी बताइए कि कैसे हैं आप और कैसा है आपका शहर?
1: सर रतलाम से 12 किलोमीटर दूर मेरा गांव है और हम तो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं सर।
0: जी,
1: तो अभी सोयाबीन की फसल मतलब लगभग कटने वाली है, जिसके बाद गेहूं और लहसुन वगैरह की खेती करेंगे सर, मटर वगैरह की।
0: जी जी जी
1: और सर आकाशवाणी से मैं 1980 से जुड़ा हुआ हूँ।
0: बहुत खुशी की बात है। और लगातार विविध भारती सुनते हैं आप?
1: विविध भारती तो सर मतलब मेरे पास रेडियो है, दो रेडियो रहते हैं, मेरे खेत पे भी रहता है और घर पे भी चलता ही रहता है।
0: अच्छा, बहुत ही बढ़िया। मुझे ये
1: हाँ
0: बताइए कि नए गानों की बजाय पुराने गाने लोगों को क्यों पसंद आते हैं?
1: सर, नए गानों में जो म्यूजिक है वो बिल्कुल मतलब थोड़ा अलग ढंग का है, और पहले के जो गीतकार थे, शायर थे, गायक कलाकार थे, उनके क्या कहना है। हाँ
0: बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए पूरी करते हैं इस बातचीत को और आपको सुनवाते हैं धरती फिल्म का ये गाना आपके लिए।

0: हेलो फरमाइश
1: योनुस भाई, ठीक हो आप? सर,
0: जी, आप कौन बोल रहे हैं?
1: बिलाल अहमद कश्मीर से बोल रहा हूँ।
0: बिलाल अहमद साहब, कश्मीर में कहाँ हैं आप?
1: हम डिस्ट्रिक्ट बड़गांव है, गांव है गोंडीपना।
0: अच्छा, उस इलाके की क्या खासियत है?
1: यहाँ सर ये सेबू की दरख्त है
0: अच्छा,
1: बहुत। हाँ
0: और वादिया कश्मीर में विविध भारती किस तरह सुनाई देती है और कितना ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
1: सर, हम बहुत पसंद करते हैं, सुबह से शाम तक हम आपके प्रोग्राम सुनते हैं।
0: अच्छा, मुझे ये बताएं कि कश्मीर से बाहर के लोग जब कश्मीर घूमने आते हैं तो वो गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, इन सब जगहों पर जाते हैं। कश्मीर के लोग कहाँ घूमने जाते हैं?
1: कश्मीर के लोग बाहर भी जाते हैं, बाहर कंट्री में बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: नहीं, मेरा मकसद था कश्मीर के लोग कश्मीर में कहाँ घूमने जाते हैं।
1: यहाँ भी जाते हैं, बहुत जगहों पर जाते हैं।
0: अच्छा, अभी आपके गांव में किस तरह का मौसम है?
1: अभी तो मौसम अच्छा है, अभी मौसम सर्मा आने वाला है, तो उसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होते हैं, तो अभी तो ठीक मौसम है अभी।
0: जी, वैसे इन दिनों में टूरिस्ट किस तरह से आ रहे हैं, कितनी तादाद है?
1: बहुत टूरिस्ट अभी भी आते हैं, दो पथरी है यहाँ हमारा वो इलाका है, वहाँ में नजदीक है इस गाँव से, बहुत टूरिस्ट आते हैं, सुबह से शाम तक आते हैं। अभी गुलमर्ग भी आते हैं, सोनमर्ग, वैरनाग,
0: जी, मौसम की
1: बहुत
0: पहली
1: बहुत।
0: बर्फबारी हो गई, हमने सुना है।
1: ना अभी बर्फबारी नहीं हुई, थोड़ा मौसम आलूदा रहते हैं, लेकिन बहुत धूप है कल से।
0: जी, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: आज हम यूनुस भाई वो गाना है ना, दिल दिया है जान दिया ए वतन तेरे लिए।
0: कर्मा फिल्म का ये गाना है, आनंद
1: हाँ
0: बख्शी
1: बिल्कुल,
0: के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज, सुभाष घई की ये फिल्म थी। आपकी नजर वादिया कश्मीर में ये गाना किया जा रहा है।

0: हेलो फरमाइश।
1: गोपाल बोल रहा हूँ मैं, ग्राम ककवासा से।
0: अच्छा, ये कुकवासा कहाँ पड़ा भाई?
1: जी ककवासा अपने जी है ना, ये भोपाल के पास में ही है जी, मान लीजिए
0: अच्छा, कौन सी वाली रोड पर?
1: जी अपना है ना वो जामनेर वाली की रोड गए ना, यहाँ पर ही है जी, पास में पड़ता है अपना गांव।
0: अच्छा, तो बताइए आपके
1: आप
0: गांव
1: बता
0: की क्या
1: जी,
0: हालत है?
1: गांव की हालत बढ़िया है, बारिश हुई थी अभी 2-3 दिन बाद, अभी तो क्योंकि फसल भी आने वाली है, मक्का की फसल लगा रखी है।
0: तो बारिश तो 1 महीना लेट चल रही है, हमने सुनो।
1: हाँ लेट ही चल रही है अभी तो।
0: अच्छा, बाकी गांव के हालचाल कहाँ है?
1: गाँव की हालचाल तो बढ़िया है जी, मान लीजिए अभी फसल कटेगी, ये नवरात्रि भी आने वाली है,
0: हाँ, तो तैयारियां वैयारियां चल रही?
1: तैयारी करेंगे, अभी तो नहीं चल रही है जी, मान लीजिए।
0: अच्छा,
1: सर जी पहली बार बात हो रही है, यूनुस खान जी बोल रहे हैं ना?
0: हाँ, यूनुस खान बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा हमें भी। अच्छा बताइए, किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं आप?
1: सिर्फ तुम फिल्म का सुनना है, वो पहली पहली बार मोहब्बत की है, कुछ ना समझ में आए मैं क्या करूं जी वाला, कुमार सानू अलका याग्निक की आवाज में।
0: क्या बात है, आपको तो सब याद है, बहुत रेडियो सुनते हैं आप।
1: हाँ सुनते हैं हम तो पूरे कार्यक्रम जो, बहुत सालों से सुनता है, पहले आता था वो सुपर हिट आता था सदाबहार नगमे, मन चाहे गीत भी आते थे पहले 1:30 बजे से, वो बहुत सालों का रेडियो था तो वो रेडियो पे सुनते थे पहले तो,
0: और अभी
1: अभी मोबाइल ऐप पे चल रहा है अभी जी, मान लीजिए
0: क्या बात है, मोबाइल ऐप पे बहुत ही अच्छा रहता है, एक बटन दबाओ और
1: बहुत
0: रेडियो चालू हो गया।
1: जी। सर जी विविध भारती अपरा तो चलता ही रहता है जी, मान लीजिए सभी कार्यक्रम आपके चलते ही रहते हैं।
0: बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार, बुलढाणा महाराष्ट्र से नारायण हाजी बोल रहा हूँ सर।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: एकदम बहुत बढ़िया है सर, आप सुनाओ, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल अच्छे हैं। बताइए कि आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: याराना फिल्म का गीत है सर, तेरे जैसा यार कहाँ, ये गीत सुना है सर आज?
0: अपने किस दोस्त की नजर कर रहे हैं?
1: मेरे तो दोस्त वैसे तो बहुत है, सब छोटा लोग मेरे दोस्त है सर। किसका नाम ले?
0: ऐसा सबसे पुराना दोस्त कौन है आपका, बचपन का दोस्त?
1: बचपन का दोस्त तो अभी दवाखाने में एडमिट है सर, एक्सीडेंट हो गया उनका।
0: अरे अरे अरे, तो आपको तो बहुत फिक्र होगी उनकी।
1: सर अभी उनको ही फोन लगा रहा था, लेकिन हेलो फरमाइश में फोन लगा, बहुत सालों के बाद फोन लगा मेरा।
0: बहुत साल, मतलब कितने साल हो गए?
1: मैं कम से कम 1995 से रेडियो सुन रहा
0: जी,
1: तब से फोन लगा, लेकिन लगाई भी नहीं, आज तक नहीं फोन लगा मैंने।
0: आज पहली बार फोन लगाई, ये तो बहुत खुशी की बात है फिर।
1: हाँ सर, बहुत खुशी की बात, इतनी खुशी हो गई कि मैंने फिल्म का नाम भी नहीं बता सकता था, लेकिन वैसे भी याद आ गया इसलिए बोल दिया।
0: क्या बढ़िया बात है, अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपका जो दोस्त बीमार है, जिसका एक्सीडेंट हो गया है, हम ये प्रार्थना करते हैं कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सुनिए याराना फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: गांधी पार्क के मनपुरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बोल रहा सर जी, मनोज नामदेव।
0: मनोज जी कैसे हैं आप?
1: बस सर जी बहुत बढ़िया है, आपका आशीर्वाद है भगवान की कृपा से, मैं बहुत बढ़िया हूँ सर।
0: अच्छा अब बताइए आज किस गाने की फरमाइश कर रहे हैं?
1: फिल्म का नाम रहेगा विजय पथ, उसमें गाना है राहों में उनसे मुलाकात।
0: वाह ये तो अजय देवगन का गाना है।
1: बिल्कुल सर।
0: और तब्बू का गाना है।
1: हाँ सर बिल्कुल।
0: कुछ याद आता है ये फिल्म कब कहाँ देखी थी?
1: सर जी मैंने सबसे पहले फिल्म टॉकीज में देखी थी 2018 में।
0: अरे बाप रे ये सब भी याद है आपको?
1: हाँ सर बिल्कुल। और एक साल से सर मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि सर आपसे मेरी बात हो, आज जाके मेरी उम्मीद पूरी हुई है सर।
0: बिल्कुल बात हुई और हमें भी बहुत अच्छा लगा। पूरी करते हैं बातचीत, आपको सुनवाते हैं विजय पथ फिल्म का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी नमस्ते सर
0: नमस्ते, कौन बोल रहा है?
1: जी। संतोष कुमार राव बात कर रहा था सर, उमरिया मध्य प्रदेश से।
0: अच्छा बताइए बताइए, कैसे हैं आप?
1: मैं बहुत अच्छा सर, आपके प्रोग्राम से लगातार जुड़ाव रखते हैं। मनचाहे प्रोग्राम में इतनी शानदार और मनमोहक प्रस्तुतियाँ देते हैं सर, बेहद ही लाजवाब प्रोग्राम होता है मनचाहे गीत, और विविध भारती के कार्यक्रम जितने भी आते हैं सर, बहुत ही प्यारी प्रस्तुतियों के साथ आपका प्रसारण आता है सर।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और उमरिया में किस चीज की खदानें हैं?
1: सर यहाँ पे कोयला खदाने हैं सर यहाँ पे, और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस समय, और कोयला की उत्खनन हमेशा यहाँ पे जारी रहती है सर।
0: अच्छा, वहाँ विविध भारती किस तरह सुनाई देता है?
1: डीटीएच के माध्यम से प्रसारण आता है, न्यूज ऑन AIR एप्लीकेशन के माध्यम से प्रसारण आता है, FM बैंड 102 MHz पर आकाशवाणी शेड्यूल के माध्यम से प्रसारण आता है सर। बहुत ही अच्छी उन्नति तकनीकों के साथ आपका प्रसारण स्पष्ट रूप से पहुंच पाता है सर।
0: अच्छा, और बहुत ही प्यारा सुंदर प्राकृतिक सुषमा से भरपूर इलाका है आपका?
1: जी बिल्कुल सर, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है सर, हरियालियाँ चारों तरफ है, और आपका प्रसारण बहुत ही सुमधुर आवाज के साथ पहुँचता है, और पूरे परिवार का आनंद उठाते हैं हम लोग राष्ट्रीय सेवा विविध भारती देश की सुरीली धड़कन के माध्यम से।
0: वाह, आज किस गाने की फरमाइश करना चाहते हैं?
1: आज की टू मूवी का गाना है चाहूं मैं आना।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी करते हैं आपकी फरमाइश और आपको उमरिया में सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए हम आपके टेलीफोन कॉल सोमवार को रिकॉर्ड करते हैं दिन में 11 बजे से। दो टेलीफोन नंबर है हमारे 0222867 0288 यानी 0228670288 और 0224002466 यानी 0224002462। जिन श्रोताओं के कॉल्स आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं उनसे हम विनम्र निवेदन ये करेंगे कि वो कृपया हमें आगामी 2 माह तक फोन न करें ताकि हम अपने नए श्रोताओं को मौका दे सकें। चलने से पहले आपको बता दें कि आज के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर थीं किरण बंग, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुर्लेकर। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राघवेंद्र सिंह नेगी और मैं आपका दोस्त यूनुस खान। इजाजत दीजिए, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: जश्न विविध भारती की 70वीं सालगिरह का। 3 अक्टूबर को विविध भारती पर आ रहा है कौन।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो।

0: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has said, service should be the main purpose of life and must be inherent in every individual. He said that in politics too, service should remain the guiding principle, even when one reaches the highest position. Mr. Modi made these remarks during a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi.
1: सेवा यही मुख्य हमारा काम होना चाहिए और हम सेवा कर कर के ही सेवा का संदेश देंगे, शब्दों में नहीं देंगे। हमारे आचरण से लोगों को पता चले कि राजनीति में सत्ता कितनी ही क्यों न बड़ी हो जाए, लेकिन हमारा मार्ग सेवा का ही रहेगा। हम कभी भी सेवा

0: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says spirit of service is the greatest driving force for country's progress. Highlights government innovative schemes bringing 25 crore citizens out of poverty. Government cuts basic customs duty on crude edible oils to ease domestic prices. In Odisha, heavy rain continues under influence of deep depression in its southern parts and adjoining north coastal Andhra Pradesh. Sensex plunges 1,248 points to settle at 73,581. And at Asian Games in Japan, India won silver medals in mixed relay race and wushu. Seema Kumari bags historic bronze in 10,000 meter race. Double sculls rowing and mixed skeet shooting teams also won bronze. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has said spirit of service is the greatest driving force for the country's progress. He highlighted that government innovative schemes are bringing 25 crore citizens out of poverty. During a virtual interaction with Seva Yatris travelling on the Yatra from Vadnagar to Varanasi, he said whether it is PM Kisan or the PM Surya Ghar Yojana, countless such schemes are recognized for their last mile delivery.
1: हमारे किसानों के पास पीढ़ियों से बना हुआ ज्ञान का भंडार है. वे इस नॉलेज को हर दिन अपने जीवन में अपनाते हैं. हमें इन अनुभवों से भी सीखना है. अगर अनुभव करते तो भारत की विविधता की अनुभूति होती है और उनसे भी विविधता में भी एकता के भी दर्शन होता है. वो हमें हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंचाने है. एक गांव का अच्छा प्रयोग दूसरे गांव के काम आए. एक युवा का समाधान दूसरे युवा की ताकत बने.
0: Mr. Modi said, everyone must vigorously advance the pivotal role of the youth in building a developed India by 2047. The Prime Minister said, we are people dedicated to nation building and set out with the resolve to build a developed India.
1: 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में हमें युवा शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका को एकदम से मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है. आज की युवा पीढ़ी विकसित भारत की निर्माता भी है और यही पीढ़ी एक बड़ी लाभार्थी भी होगी. और इस दायित्व को निभाने के लिए भारत को जमीन पर जानना, समझना, देश की हर बारीकियों को अनुभव करना,

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: The motto for the Indian contingent at the 2026 Asian Games has been dedication, determination and discipline. And today, we saw all these qualities on display in Aichi Nagoya. Hello and welcome to our special daily Asian Games recap show on Akashwani. My name is Abhinav Punchi. Let's jump straight into the headlines. The Indian athletes have added 5 medals to their Asian Games tally on Thursday to take the overall total to 17 medals. The Indian team bagged silver in the 4x400m mixed relay with an outstanding performance from the athletes. Before that silver, a superb 10,000m run from Seema Kumari ensured a bronze for India after 16 years in this event. The day started with rowers Satnam Singh and Salman Khan claiming a bronze medal in the men's double sculls event. A.S. Naruka and Parinas Dhaliwal added a skeet shooting bronze medal in the afternoon, while Roshabina Devi claimed a silver in Wushu after losing the final to Zhang Xiao of China in the women's 60kg Sanda event. Let's now take a detailed look at athletics, where India got 2 medals today. Prerna Sharma has more.
2: Bharatiya athletes dikhane lage rang, ek ke baad ek medal aur ab athletics mein gold ka intezar. Indian athletics ka medal account ab khul chuka hai aur track and field se lagatar achhi khabrein samne aa rahi hain. Silver aur bronze dono medal Bharat ki jholi mein aa chuke hain. Ab intezar hai us sunahre pal ka jab podium par gold ke saath Bharatiya tiranga sabse upar lehraye. Shuruaat karte hain mixed 4x400 मीटर रिले से, जहां इंडिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया. पूर्वमा राजू, विशाल थेनारसु, विद्या रामराज और मनु टीएस के क्वार्टरेट ने 3:14.46 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया. इस रेस का सबसे खास पल आया आखिरी लेग में, जहां विद्या रामराज ने शानदार दौड़ लगाते हुए इंडिया को सिल्वर तक पहुंचाया. बहरीन के गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता और इंडिया ने हांगझाउ 2023 में जीता सिल्वर इस बार भी बरकरार रखा. अब बात उस मेडल की जिसने एशियन गेम्स 2026 में इंडियन एथलेटिक्स का खाता खोला. महिलाओं की 10,000m रेस में सीमा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता. उन्होंने 32:50.05 का समय दर्ज किया. ये एशियन गेम्स 2026 में एथलेटिक्स का इंडिया का पहला मेडल है. साथ ही महिलाओं की 10,000m में यह 2010 के बाद इंडिया का पहला एशियन गेम्स मेडल भी है. 2010 में प्रीजा श्रीधरन ने गोल्ड और कविता राउत ने सिल्वर जीता था. 16 साल बाद इस इवेंट में एक बार फिर इंडिया ने पोडियम पर जगह बनाई है. अब रुक करते हैं मेंस 100m की ओर, जहां भारत के अनिमेश कुजूर और गुरविंदर सिंह ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. अनिमेश कुजूर ने अपनी हीट में 10.36 का समय निकालते हुए तीसरा स्थान हासिल किया. उनसे आगे थाईलैंड के पूरीपोल बूनसन और चाइना के जेन केली रहे. तीसरे स्थान पर रहने के बावजूद अनिमेश ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफिकेशन हासिल कर लिया. वहीं हीट 4 में गुरविंदर सिंह ने 10.38 का समय निकालकर दूसरा स्थान हासिल किया और सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की. यानी अब मेंस 100m में भारत की उम्मीदें दोनों स्प्रिंटर्स पर टिकी हैं. अब बात करेंगे ट्रिपल जंप की, जहां भारत की आशा इलांगो ने आखिरी अटेम्प्ट तक पोडियम के लिए

0: पूरा जोर लगाया। अपने सिक्स्थ और फाइनल अटेम्प्ट में आशा ने 13.59 मीटर की जंप लगाई और फोर्थ पोजीशन पर कंपटीशन खत्म किया, यानी पोडियम से उनका मामूली अंतर रह गया। इसी इवेंट में भारत की एक और एथलीट निहारिका वशिष्ठ ने हिस्सा लिया और वो 10th पोजीशन पर रही। अब रुक करते हैं हेप्टाथलॉन का, जहां भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन पहले दिन थोड़ा निराशाजनक रहा, लेकिन अभी उम्मीदें बाकी हैं। आज पहले दिन 4 इवेंट्स पूरे हो चुके हैं और अगर हम भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो सबसे पहले बात करते हैं अनामिका की। अनामिका ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.80 सेकंड में पूरी कर 868 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.74 मीटर की कूद लगाकर 903 पॉइंट्स, शॉट पुट में 11.15 मीटर के थ्रो के साथ 605 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 25.96 सेकंड में पूरी कर 801 पॉइंट्स हासिल किए। इन चारों इवेंट्स को मिलाकर उनका कुल स्कोर 3177 पॉइंट्स बना, जिसके बाद वे 7वें स्थान पर रहीं। वहीं दूसरी ओर पूजा ने 100 मीटर बाधा दौड़ 14.61 सेकंड में पूरी कर 894 पॉइंट्स, हाई जंप में 1.71 मीटर की छलांग लगाकर 867 पॉइंट्स, शॉर्ट पुट में 11.44 मीटर थ्रो के साथ 624 पॉइंट्स और 200 मीटर दौड़ 26.27 सेकंड में पूरी कर 774 पॉइंट्स हासिल किए। पूजा का कुल जोड़ 3159 पॉइंट्स रहा और वे 9वें स्थान पर बनी हुई हैं। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, कल दूसरे दिन बाकी 3 आखिरी इवेंट्स खेले जाएंगे, लॉन्ग जंप, जैवलिन थ्रो और 800 मीटर दौड़। इन तीनों इवेंट्स का खेल पूरा होने के बाद ही सभी खिलाड़ियों के कुल अंक जोड़े जाएंगे और पहला, दूसरा और तीसरा स्थान यानी पोडियम फिनिश तय होगा। भारतीय फैंस की नजरें कल अनामिका और पूजा की जोरदार वापसी पर होंगी। तो एथलेटिक्स में भारतीय एथलीट्स का प्रदर्शन लगातार सुर्खियों में है। सिल्वर और ब्रॉन्ज के साथ भारत ने पोडियम पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है, जबकि कई भारतीय एथलीट्स क्वालिफिकेशन और स्ट्रॉन्ग फिनिशेस के जरिए अगले मुकाबले की ओर बढ़ रहे हैं।
1: Now time to get you all the updates from shooting. Shabab Anwar has more.
2: भारतीय निशानेबाज अनंतजीत सिंह नारोका और परिनाज धालीवाल की जोड़ी ने भारत को निशानेबाजी का 8वां पदक दिलाया। ये भारतीय जोड़ी शॉटगन के स्किड मिक्स्ड स्पर्धा के फाइनल में 48 में से 44 निशाने लगाकर तीसरे स्थान पर रही और कांस्य पदक जीता। वैसे तो भारत और दक्षिण कोरिया का स्कोर बराबर रहा था, लेकिन टाई ब्रेकर के बाद भारत को ब्रॉन्ज से ही संतोष करना पड़ा। ये मौजूदा एशियन गेम्स में शूटिंग में भारत का 8वां मेडल है। इसमें 4 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इससे पहले भारतीय निशानेबाजों ने 10 मीटर एयर पिस्टल क्वालिफिकेशन में निराश किया। कमलजीत ने 580 अंकों के साथ 9वां स्थान प्राप्त किया, जबकि आकाश भारद्वाज भी फाइनल में जगह नहीं बना सके।
1: It was a good day for Indian rowing, where history was made. Here's more. Indian double sculls rowers Satnam Singh and Salman Khan won the bronze medal at the Aichi Nagoya Asian Games 2026 on Thursday. In the first 1000 meter, India was seen trying to catch up to Uzbekistan and China in the lead. With 500 meters to go in the race, the pair momentarily went past the Uzbeks, but it was not to be. Satnam and Salman could eventually register a finish time of 6:13 and 25 seconds. China won gold and Uzbekistan ended up with silver. Earlier, Raj Pawar missed out on a bronze medal in the men's singles sculls final. In the 2000 meter race, Balraj held on to second place with 500 meters to go before being overtaken. Balraj finished fourth with a timing of 6:54 and 80 seconds. Arvind Singh, Kulwinder Singh, Navdeep Singh and Jakar Khan finished fifth in the men's quadruple sculls final, while Ujjwal Kumar Singh and Rohit finished fourth in the lightweight men's double sculls final. And despite striving hard, there was disappointment for Gurbani Kaur, Alina Anto, Tendeliti Habujam and Poonam finished last in the women's four final. There was an outstanding performance from the Wushu Arena today, and Sakshi Manwal has more.
3: Wushu icon Rushabena Devi added another historic chapter to her Asian Games journey, taking home the silver medal in the women's Sanda 60kg category after a hard-fought battle against China's Xiao Zhang. Rushabena gave it her all in the summit clash, but the Chinese contender edged ahead to claim the gold. With this effort, Rushabena Devi has become a 3-time Asian Games medalist, adding to her 2018 bronze and 2022 silver, and continues her reign as India's most decorated wushu athlete on the continental stage.
1: India had their first test in hockey today when they faced South Korea. Let's find out what happened. India completed its third consecutive win in the group stages of the Asian Games 2026 men's hockey tournament with an 8-2 win over South Korea. Dilpreet Singh and Abhishek completed a brace each

0: as India extended its lead atop the Group A standings. Sukhjeet Singh, Harmanpreet Singh, Rajinder Singh and Shilanan Lakra were the other scorers for Craig Fulton's side. Kim Jao and Kim Yong-Buk found the back of the net for the South Koreans. Our boxers were in action at Aichi Nagoya. Shabab Anwar has more.
1: मुक्केबाजी में आज का दिन भारत के लिए मिलाजुला रहा और कुछ हद तक दिल तोड़ने वाला भी. साक्षी चौधरी मुक्केबाजी के महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में राउंड ऑफ 16 में हारकर बाहर हो गई हैं. उन्हें कजाकिस्तान की मुक्केबाज अलुआ बालिकोबोकोवा ने 3-2 से हरा दिया. साक्षी ने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक कांस्य पदक विजेता आयरा वेलेगोस को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंची थी, लेकिन इसके बाद उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. उधर एक और महिला भारतीय बॉक्सर परवीन हुड्डा एशियन गेम्स के राउंड ऑफ 16 में मुकाबला खेले बगैर जीत गईं. कजाकिस्तान की मालिका नाजिमोवा ने उन्हें वॉकओवर दे दिया. अब क्वार्टर फाइनल में उनका सामना उज्बेकिस्तान की नब्बखोर खामिदोवा से होगा. मुक्केबाजी के पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में आज दिल तोड़ने वाला एक ऐसा पल भी देखने को मिला जब भारत का एक मुक्केबाज सुमित कुंडू को जीत के करीब होने के बावजूद मुकाबला छोड़ना पड़ा. सुमित मुकाबले में पूरा नियंत्रण बनाए हुए थे, तभी उनके घुटने में चोट लग गई. इसके बाद वो रिंग पर गिर पड़े. सुमित के लिए आगे खेलना संभव नहीं था और चोट के कारण उन्हें मुकाबला छोड़ना पड़ा. और इराक के अली कासिम को वॉकओवर के द्वारा अगले दौर यानी के क्वार्टर फाइनल में जगह मिल गई.
0: They were successful for India in squash as well. Sakshi Manwal tells us why.
2: In men's single round of 16, Abhay Singh defeated Ravindu Luxury of Sri Lanka 11-3, 11-5, 11-6, thereby sealing the match in his name in clean games, making it 3-0 to secure a victory for himself. Veer Chotrani faced a tougher battle against Malaysia's Sanjay Jiwa. The final score of the match was 3-2 in favor of India's Veer Chotrani, the scoreline being 11-9, 8-11, 11-6, 15-11, 11-6. Anahat Singh began her women's singles campaign with a convincing 3-0 win over Singapore's Au Yuong Wai In. She took the game 11-4, 11-5, 11-7 in her favor to advance to the quarterfinals. Tanvi Khanna pulled off a comeback win over Singapore's Au Yuong Wai Yan in the women's singles round of 16. After dropping the opening game 5-11, Tanvi responded by winning the next three 11-4, 11-5 and 13-11 to seal a 3-1 victory. The Indian held her nerves in a tense fourth game to book her place in the quarterfinals. Tanvi Khanna will now face Anahat Singh in the quarterfinals. Joshna Chinnappa and V. Senthil Kumar secured a hard-fought 2-0 victory over fellow Indian Suraj Chand and Shamina Riaz to advance to the mixed doubles quarterfinals. The final scoreline stood like 11-7, 11-10. The second game proved to be a thriller with Suraj and Shamina fighting back from 7-9 down to level the score at 9-9 and earn a game point. However, Joshna's experience held firm during the pressure points, allowing her and Senthil Kumar to close out the match in their favor.
0: The Indian contingent was in action in Kabaddi. Prerna Sharma has more.
3: Asian Games में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपने अभियान को जीत की लय में आगे बढ़ाते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है. चीनी ताइपे के खिलाफ 37-21 की जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में सभी चार मुकाबले जीतकर ग्रुप स्टेज का समापन किया. यानी अब खिताब की राह में भारत के सामने सिर्फ दो मुकाबले और हैं. अब कल सेमीफाइनल में भारतीय पुरुष कबड्डी टीम का मुकाबला थाईलैंड से होगा. दूसरी तरफ अगर महिला कबड्डी की बात करें तो मेजबान जापान के खिलाफ भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 50-25 की बड़ी जीत दर्ज की. आखिरी रेड में बोनस पॉइंट्स के साथ भारत ने अपनी एशियन गेम्स अभियान का ग्रुप स्टेज खत्म किया. इस जीत के साथ भारत ने ग्रुप ए में लगातार तीसरी जीत हासिल की और टॉप पर रहकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली. अब सेमीफाइनल में भारत का सामना नेपाल से होगा.
0: There was more good news for India from the table tennis arena. Let's hear from Sakshi Manwal.
2: India have marched into the third round in women's doubles table tennis with Diya Chitale and Yashaswini Ghodpade securing a straightforward 3-0 win with the scoreline reading 11-2, 11-2, 11-4. In women's doubles round 2, another Indian women's doubles team showed its class with a 3-0 win over Mongolia. Shrija Akula and Cinderella Das began their women's doubles campaign in style, cruising to a comfortable 3-0 victory with the scoreline reading 11-5, 11-4, 12-10 over bowler Erdine Buttbook and Sanja. In men's single round 1, Indian paddler Manush Shah started his men's singles campaign with a win over Malaysia's Wong Kui Shen.

0: Anush prevailed over Wong with a clean 4-0 scoreline that read 11-9, 14-12, 11-7, 11-4.
1: It was a tough day for the Indian fencing contingent. Prerna Sharma has the details.
2: महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग स्पर्धा में भारत की सीए भवानी देवी और श्रेया गुप्ता ने राउंड ऑफ 16 तक का सफर तय किया। दोनों खिलाड़ियों ने पूल स्टेज से नॉकआउट स्टेज में जगह बनाई, लेकिन राउंड ऑफ 16 में मिली हार के साथ इस स्पर्धा में भारत का अभियान समाप्त हो गया। भारत की पहली ओलंपिक फेंसर सीए भवानी देवी ने पूल चार में 5 मुकाबले खेले, 2 जीत के साथ वह पूल चार में चौथे स्थान पर रही और नॉकआउट स्टेज में पहुंची। इसके बाद राउंड ऑफ 32 में भवानी ने मुकाबले में 15-8 से जीत दर्ज की और राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई। राउंड ऑफ 16 में उनके सामने चीन की राओ शुएई थी, जो 2026 वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता हैं। राओ ने मुकाबले में शुरुआती बढ़त हासिल की और अंततः 15-5 से जीत दर्ज की। इसके साथ भवानी देवी का एशियन गेम्स 2026 में महिला व्यक्तिगत सेबर फेंसिंग अभियान समाप्त हुआ। दूसरी ओर श्रेया गुप्ता ने पूल दो में तीसरा स्थान हासिल कर सीधे राउंड ऑफ 16 के लिए क्वालिफाई किया। पूल स्टेज में उन्होंने 3 मुकाबले जीते, जबकि 2 में उन्हें हार मिली। तीसरे स्थान के कारण उन्हें राउंड ऑफ 32 में मुकाबला नहीं खेलना पड़ा। राउंड ऑफ 16 में श्रेया का सामना दक्षिण कोरिया की जॉन हा यंग से हुआ। पेरिस ओलंपिक 2026 की रजत पदक विजेता जॉन ने श्रेया को 15-6 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई।
1: The Indian contingent strived hard to make an impact in swimming. Sakshi Manwal tells us the results.
0: India's Benedictine Beniston finished 5th in the Heat 5 of men's 50-meter butterfly event, failing to qualify for the final directly but was placed in reserves. He finished 12th overall. In men's 4x100-meter freestyle relay heats, Benedictine Beniston, Anish Sunil, Akash Mani and Gitesh Shah were eliminated in the heats after finishing last in their 6-team race. They recorded a time of 3 minutes 23.51 seconds, leaving them 12th overall out of 13 teams.
1: It was a tough day for India in canoe. Sakshi Manwal has more.
0: India faced a disappointing day in canoe sprint with all 4 entries missing out on medals at the Miyoshi Lake canoe course. Raju Rawat and Film Gyaneshwar Singh finished 9th and last in the men's canoe double 500-meter finals, choking 1 minute 56.121 seconds. The Indian pair finished 15.380 seconds behind gold medalists China's Wu Shengyu and Ji Bowen. India's men kayak 4 finished 7th in the 500-meter finals with the quartet of Niyocha Singh, Lighton Jim, Varinder Singh, Oinam Arun Singh and Harshvardhan Singh Shaktawat clocking 1 minute 28.982 seconds. In the women's kayak double 500-meter game, Sonia Devi and Parvati Geeta failed to make the final after finishing last in their semi-final in 2 minutes 1.020 seconds. Megha Pradeep also missed out in the women's canoe single 200-meter final after finishing 4th in her 5-boat semi-final in 51.093 seconds. Megha finished 1.666 seconds behind the winner.
1: Let's now hear from the latest from what happened in the eSports arena with Prerna Sharma.
2: eSports एक ऐसा खेल जो मैदान पर नहीं बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर खेला जाता है। भारत के लिए eSports से अच्छी खबर आई है। भारत के डेब्यूटेंट परितोष ने ग्रुप बी में 2 जीत और 2 हार के साथ तीसरा स्थान हासिल करते हुए क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। अब परितोष पोयो पोयो चैंपियंस के क्वार्टर फाइनल में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। उन्होंने eSports में भारत की चुनौती को अगले चरण तक पहुँचाया है।
1: 5 medals have come on a terrific Thursday for the Indian contingent. Here's the latest from the medals tally.
2: और इसी के साथ एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए एक और रोमांचक दिन समाप्त होता है, जहां एथलेटिक्स, वुशू, शूटिंग और रोइंग में 5 नए पदक, 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज जुड़ गए। अगर मेडल टैली की बात करें तो टॉप 3 देशों में चाइना 80 गोल्ड, 30 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज के साथ कुल 130 मेडल जीतकर पहले स्थान पर है। जापान 20 गोल्ड, 34 सिल्वर और 37 ब्रॉन्ज के साथ कुल 91 मेडल लेकर दूसरे स्थान पर है। दक्षिण कोरिया 10 गोल्ड, 12 सिल्वर और 28 ब्रॉन्ज के साथ कुल 50 मेडल जीतकर तीसरे स्थान पर है। वहीं भारत 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मिलाकर कुल 14 मेडल के साथ 15वें स्थान पर बना हुआ है।
1: So a good day for India today, but they'll be hoping for a lot more on September 25th, Friday. India's hopes will be on shooting when the men's 50-meter rifle three positions individual and team final, with APS Tomar, Rudraksh Patil and Neeraj Kumar holding India's hopes. Kamaljeet and Suruchi Inder Singh will also